0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जैसा कि by now you have figured out that I have been to Italy recently, और मैंने पता है इटली जाकर एक चीज सीखी कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना, प्यार की लैंग्वेज सेम होती है. अगर आपको किसी से मोहब्बत है, आप उस इंसान का हाथ पकड़ोगे. अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो जब कोई देख नहीं रहा होता, यू आर गोइंग टू स्टील अ किस. बट हैविंग सेड दैट, मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि यूरोप में प्यार दिखाने का तरीका प्रेटी मच द सेम है जो इंडिया में है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो यूरोप के पास नहीं है, और वो है हमारे अमेजिंग गाने. मतलब इमेजिन करो कि आपको किसी से कहना है दैट यू लव देम, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग अ सिंपल प्लेन, जैसे इटली में कहते हैं आई लव यू, उसकी जगह यू एंड अप सेइंग तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है. और मेरी तरह इट डजंट इवन मैटर कि आप बेसुरे हो. इफ यू लव समवन यू विल सिंग फॉर देम. इफ यू लव देम एक्सेसिवली आप उनके लिए डांस करना शुरू कर दोगे. एंड दैट मेक्स मी रियलाइज कि प्यार तो सब जगह सेम है, लेकिन अगर प्यार पे यू वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ चेरी ऑन टॉप, देन इंडिया जैसी अमेजिंग ड्रामेटिक जगह और कोई नहीं है. और अगर आपने अपनी जिंदगी में बहुत ड्रामेटिक काम किए हैं प्यार के चक्करों में, देन मेरी तरह के इंसान तो आप हो ही. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट योर लव स्टोरी ऑल्सो, और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना. सो हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
2: 13 सितंबर रविवार
1: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए दैट यू एक्चुअली लव हर अ लॉट और आप उसके लिए महंगे महंगे बैग्स ला सकते हो. आपने एक सेकेंड हैंड बैग खरीद के दिया उसे और उसे लग रहा है कि आप उसके लिए ब्रांड न्यू बैग लेकर आए. What kind of loser boyfriend you are? But usse koi farak nahi padta because I'm not going to judge you. Whatever your confession is, hit me up on Insta ya FB and we will get talking.

0: बेबी मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉटी गर्ल.
1: हाय रोशी,
0: हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी गुड.
0: वेरी
1: आप
0: गुड नहीं
1: बताओ.
0: हो, आप थोड़े से सुपरफिशियल भी हो. आपने मुझे अपनी कन्फेशन बता दी है इंस्टाग्राम पे. तो जरा मुझे खुल के बताना कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है.
1: बिल्कुल खुल के बताऊंगी. सो बेसिकली आई वॉज डेटिंग अ गाय हु वाज 10 ईयर ओल्डर देन मी. सोसाइटी क्लब में मिला था वो, बट ही वाज नॉट दैट फन. और मुझे कॉलेज में एक हॉट लड़का मिल गया, सो आई डंप्ड हिम.
0: ओके, ऑब्वियसली यार 10 साल बड़ा है उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी कॉलेज में हॉट बंदे. आई एम नॉट जजिंग यू, डू कैरी ऑन. फिर
1: तो अब उसके स्टार्टअप को 6 to 7 million की इन्वेस्टमेंट मिली है.
0: किसके स्टार्टअप को?
1: एक्स के, जो मेरे से 10 years old,
0: जो आपसे 10 साल बड़ा, उसके स्टार्टअप को
1: सिक्स या 7 million का वो मिला इन्वेस्टमेंट.
0: ओके
1: ठीक है. सो आई वाज लाइक व्हाट इफ आई डेट हिम अगेन. मतलब आई वाज थिंकिंग क्योंकि पीछे तो पड़ा ही है.
0: ऑफ कोर्स
1: एंड मनी मैटर मोर.
0: और आप ये खोल के बोल रहे हो कि भाई पैसा मैटर्स. तो उसके बाद जब 6 million नहीं थे देन यू डिडंट रियली केयर फॉर हिम. अब 6 million की इन्वेस्टमेंट है तो वो क्यूट गाय का क्या होगा जिसको आप कॉलेज में देखकर इतने पागल हो रहे थे?
1: अब जो होना है हो जाएगा. मैं बस कंसेशन कर रही हूँ, मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए. मतलब मेरे जज भी करे तो इट्स ओके, नेवर माइंड, माय लाइफ माय रूल माय
0: Babe, you're a real rock star. रोशिफाई कर दूं आपको या उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको खास?
1: नहीं नहीं यार, वो तो करो, वो तो चाहिए.
2: You've been roshified.
0: ये $10 million का रोशिफिकेशन आपको मिला है फ्री फ्री फ्री. डू यू नाउ लव मी एज मच एज यू लव दिस?
1: थैंक यू थैंक यू.
0: यू आर वेलकम वेरी मच. आपकी सुपरफिशियलिटी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. बट आई लव योर ऑनेस्टी यार, मनी मैटर्स मोस्ट. अब जो है सो है, करेक्ट?
1: हाँ, जीना भी तो है ना.
0: और 7 million के साथ जो जीना होता है वो काफी कंफर्टेबल होता है. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, ट्रस्ट मी आई एम नॉट जजिंग यू. ओके, आई माइट कॉल यू सुपरफिशियल बट मेरे दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार है. एंड इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट लव, हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: ओह नो!
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यूर इन गुड हैंड्स।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeetu Raj. Jeetu Raj. Only on Mirchi, it's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतुराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
2: सुनो ब्राइट्स, अगर

0: अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।

only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

ये कौन से रैंडो दोस्त होते हैं जिन्हें हम अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं और सारी जिंदगी उनकी वाहियात हरकतों को कवर अप करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये मेरे साथ ही था उस दिन यार, नो वरी अबाउट इट, या फिर आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करो ये दारू नहीं पी किया है, इसके सारे दोस्त पीते हैं, ही इज अ रियली गुड गाय, देन दिस aforementioned good guy goes ahead and gets married. उसके बाद ना ये बंदा, ना इसका फोन कॉल, ना इसका घर बार, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. दे एब्सोल्यूटली जस्ट स्टॉप टू एग्जिस्ट इन योर यूनिवर्स एज इफ ये आपके फिगमेंट का इमेजिनेशन थे और ये कभी आपके दोस्त थे ही नहीं. कौन सा इंसान सैम, कैसा सैम, कौन सा सैम, ये तो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इसकी शादी हो गई है और अब सैम के पास आपके लिए टाइम नहीं है. अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो ना जो सफ़र कर रहे हैं सैम जैसे इंसानों के हाथों पर, देन आई थिंक आपको मेरे साथ नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एक बार गलती करके नहीं सीखता, उसके साथ दो दो तीन तीन बार जब तक कुछ नहीं होता है हमें समझ में ही नहीं आता है. सो मेरे साथ एक सैम, एक गौतम, एक गौरव हो चुका है और आई थिंक मेरे में अभी भी कैपेसिटी है टू डू एटलीस्ट टू मोर पीपल लाइक दैट. लेकिन अगर आप भी मेरी तरह ढीठ इंसान हो, आपके साथ कोई कितना भी अत्याचार कर ले आपको वो प्यार ही लगता है पुष्पा, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक, लेट्स कंपेयर नोट्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरी तरह आपको भी ओवर एंथुसियाज्म में ऐसा लगता है ना, दैट यू बीन देयर डन दैट, इंडिया की हर जगह आपने देख ली है, समटाइम्स सोलो, समटाइम्स विद योर पार्टनर. लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ब्यूटीफुल वंडर ऑफ निलोंग वैली. आई बेट आपने इसका नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था. सो दिस इज एक्चुअली द लद्दाख ऑफ उत्तराखंड. एंड लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एज वी स्पीक उसका टेम्परेचर अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम 5 डिग्री है, विच मीन्स कि ये इतनी ठंडी जगह है. एंड दिस रिजेंबल्स लद्दाख एग्जैक्टली, एक्सेप्ट कि ये लद्दाख जैसा है लेकिन लद्दाख में नहीं है, इंस्टेड इट इज इन उत्तराखंड. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज, क्योंकि ये इंडो चाइना बॉर्डर के इतने पास है दैट आप यहाँ पर जा सकते हो, इसकी ब्यूटी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ओवरनाइट नहीं रह सकते हो. सो यू कैन ओनली गो फॉर द डे टाइम, और उसके लिए आपको परमिट चाहिए होगा, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अटेन. बट अगर आपने इस निलोंग वैली की फोटोज देख ली ऑन गूगल, आई स्वेयर टू यू आपको प्यार हो जाएगा. एंड दिस टाइम नॉट विद अ पर्सन बट विद अ प्लेस. और आपको एक सीक्रेट बताऊं, यहाँ पर एक रिसेंटली नई लेक फॉर्म हुई है, नई, एंड इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द लेक्स दैट आर इन लद्दाख. एज अ सिविलियन आप शायद उसे एक्सेस ना कर पाओ, बट इफ यू मीट सम आर्मी पर्सनल ऑन द वे, आप उनसे कहना देर ऑल कैरिंग फोटोग्राफ्स ऑफ दिस लेक, इट इज सो एक्सक्विजिट, आई कॉन्ट बिगिन टू टेल यू. और अगर निलोंग वैली जैसे आपकी भी जिंदगी में यू हैव डिस्कवर्ड दिस अमेजिंग प्लेस एंड इट इज ट्रूली हिडन जेम इन इंडिया, देन आई थिंक हमें टोटली इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज दिस इज ड्राइविंग मी क्राज़ी. और मुझे इसके बारे में बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना. सो हिट मी अप बेबी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजोकर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपके दिल के साथ तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन आपके दिमाग के साथ, who is interested in you and your brain, my darling, anyone who's a sapiosexual, जो कि हूँ मैं. मतलब वो लोग जिन्हें आपके दिमाग से बेहद मोहब्बत है. और अगर आप मेरे साथ लव गेम खेलना चाहते हो जो आपका दिमाग को टेस्ट करेगा, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर आयुष है. हाय आयुष.
2: हाय रोशी.
1: आप मेरे साथ लव गेम खेलने के लिए तैयार हो?
2: बिल्कुल.
1: मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी, ठीक है? अगर आपने 500 के सही जवाब दिए तो आपको रोशिफिकेशन मिल जाएगा और 2 प्यारी प्यारी किस्सियां.
2: अरे अब तो बिल्कुल जीतना पड़ेगा भाई साहब.
1: ठीक है, सो हियर वी गो.
3: लव गेम.
1: अच्छा, तो आपका पहला सवाल है कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो सिंदूर पहनती है इवन दो शी इज नॉट मैरिड? ऑप्शन सुन.
2: रेखा.
1: अरे वाह, वंडरफुल. तुम्हें जो मैंने रेखा, तुम्हें जो मैंने जाना. आपका अगला सवाल है कि दिल 1 मिनट में एवरेज कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन सुन.
2: अराउंड. हाँ, ऑप्शन दे दीजिए.
1: अच्छा, सो डज इट बीट बिटवीन 50 to 60 minutes बीट्स पर मिनट, डज इट बीट फ्रॉम 60 to 100 या 100 to 120?
2: 60 to 100.
1: बहुत ही सही. अभी तक जो आप ये कमाल कर रहे हो ना, इसके चलते तो ऐसा हो सकता है दैट आपको वो 2 किसेस भी मिल जाए.
2: उन्हीं की वजह से तो ये कमाल हो रहा है.
1: अच्छा ठीक है, आपका तीसरा जो सवाल है कि बॉलीवुड का वो कौन सा वेटरन एक्टर है जो हमेशा सफेद कपड़ों में पाए जाते हैं सर से पांव तक?
2: अमिताभ बच्चन.
1: अवे यार, जितेंद्र.
2: जितेंद्र, ओके.
1: ठीक है, तो आपने मेरे 3 सवालों में से 2 तो सही दिए. आपके पास अभी भी 1 किस बाकी है. अगले 2 हाँ. अगर आपने सवाल सही से दे दिए जवाब, तो फिर हो सकता है कि आपको वो 1 किस तो मिली जाए. ठीक है, आपका अगला सवाल ये है कि हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन किस एक्टर को कहा जाता है?
2: ये अनफॉर्चुनेटली मेरे लास्ट वाला आंसर था. मैं आप मुझे पता था कि आप ये क्वेश्चन पूछने वाली हो, मैं पहले दे गया था गलती से.
1: आपको बॉलीवुड के बारे में पता हो या ना, स्मार्ट तो बड़े हो आप. अच्छा ठीक है, तो बेसिकली अमिताभ बच्चन इज द राइट आंसर. और आपका जो आखिरी सवाल है वो ये है, इट्स एक्चुअली नॉट इवन अ सवाल. एक गाना दूंगी आपको, ठीक है, और आपको मुझे वो गाना कंप्लीट करके देना है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो गाने का आप आंसर दोगे वो सही लिरिक्स नहीं, उल्टे लिरिक्स होने चाहिए. जैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. मान लो कि गाना है मैं प्रेमी आहा, तू प्रेमी आहा, और उसका जो कंप्लीशन है वैसे तो वो है फिर क्या डैडी क्या अम्मा, करेक्ट. लेकिन इस केस में यू कैन सिंग मैं प्रेमी आहा, तू प्रेमी आहा, फिर क्या किताबें हैं पढ़नी, कुछ भी, बट नॉट द सही लिरिक्स. ठीक है,
2: ओके.
1: तो आपका जो गाना है वो ये है, आज फिर तुम पे प्यार आया है,
2: बेहद और 2 किस्सियों का सवाल आया है.
1: पहले तो रोशिफिकेशन ले लो आप सबसे पहले.
3: You've been roshified.
1: Yes. You are such a flirt, Ayush. Such a flirt. अच्छा ठीक है, अब मैं दिल से किसिया देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने गाना वाना भी गा लिया अब तो. देर यू गो. पहली, दूसरी और तीसरी बोनस.
2: आए, मैं तो बेहोश होके गिर गया हूँ उस टाइम.
1: You are so dramatic. It was amazing talking to you. सच में इतने मजे आए ना आपसे बात करके. आई कुड लाइक, आई थिंक वी शुड प्ले दिस लव गेम अगेन थोड़े टाइम में, है ना?
2: Yeah, sure, please, awesome. please, I would love to be any किसी के लिए कुछ भी. सुबह दोपहर शाम भाई साहब, हर वक्त, दिन के सातों पहर, जितने भी पहर होते हैं 7 और ऐड कर लेंगे हम.
1: Oh God, it was amazing talking to you. और जाने से पहले, I want to tell you that you remind me of the first man I ever fell in love with. वो भी ऐसी बातें करता था. And thank you for making me sentimental. Thanks, man.
2: Thank you.
1: Take care of yourself, darling. Have a nice day.
2: Thank you. Bye.
1: अगर आप भी ऐसे चाहते हो, 2 किसियां तो हैं ही, साथ में 1 बोनस किसियम्स, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, जानू आऊं, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

ऑफेंड इट डोंट एंग्री मी माइंड इट अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है कोरियोग्राफर को मैं ही सिखा दे वो घर पे आता है

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: On 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वो जो अमेजिंग सी स्पार्क आप फील करते हो ना विद समवन दैट यू हैव न्यूली फॉलन इन लव विद, साइंस के हिसाब से दैट्स अ बिग डोपामाइन हिट. और वो डोपामाइन हिट जो आपके ब्रेन को ये फजी और वार्म और एक्साइटिंग और स्पार्कली फीलिंग्स देता है वो 18 महीने में ख़त्म हो जाती है. लेकिन इटालियंस ने, और मैं इटली की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज समवन जस्ट वेंट इटली, बट ये सच है, इटालियंस ने एक तरीका फिगर आउट कर लिया है ऑन हाउ टू बेसिकली कीप द स्पार्क अलाइव विदाउट हैविंग टू चेंज पार्टनर्स. और वो तरीका ये है कि वंस इन अ ईयर और वंस इन अ सीजन यू हैव टू डू वन न्यू थिंग टुगेदर. ये कोई बहुत महान काम नहीं करना होता, किसी लाइक बड़े से पहाड़ पे नहीं चढ़ना होता. यू कुड जस्ट लर्न टू मेक अ डिश टुगेदर जो ना आपको पता है ना आपके पार्टनर को पता है. और जैसे ही आप ये करते हो, व्हेन यू पुट अ फेमिलियर पर्सन इन एन अनफेमिलियर प्लेस, आपका जो डोपामीन है वो सर्ज करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान फिर से वही स्ट्रेंजर है जिसे हम पहली डेट पर मिले थे. I love the way the brain functions, but I love the way love functions even more. Aur agar love aapki zindagi ki BT ki sari root hai, why don't you hit me up and we will talk about it. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. And while you're at it, tell me ki aapne apne partner ke saath, kitna bhi naya relationship ho ya purana, what was the last fun new thing that you did together? Aur wo sab batane ke liye, aap mujhe dhoond sakte ho Insta par ya FB par. And while you do that, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप एक दिन मैसी फील कर रहे हो, which is a normal human thing to do, if you have to be a mess, be a hot mess. मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें ना उस बंदी, वो अजीब सी बंदी है बेचारी, ओवरवेट भी वही है, उसके करियर में लाइक यू नो सारे मैस अप्स उसी के साथ हो रहे हैं. वो बेचारी जॉगिंग करने जाती है, उसके ट्रैक पैंट्स फट जाते हैं और वो ना ऐसे, चीज़ अ वॉकिंग डिजास्टर. एंड शी टेल्स हरसेल्फ कि मैं क्या सारी जिंदगी ऐसी, आई विल बी अ मैस लाइक दिस. तो उसकी बेस्टी उसे कहती है, हाँ यू विल बी अ मैस लाइक दिस, बट इफ़ यू हैव टू बी अ मैस देन बी अ हॉट मैस. Always be pouting, always be confident. तो जो भी आसपास बकवास हो रही होती है ना, it ends up being elevated because you're looking so cute. So the trick is, जो मैंने इस बुक से सीखी है, if you're a mess, just be a hot mess. You could be a guy or a girl. बाहर कुछ भी खराब हो रहा ना, अंदर if you're confident man, you can pull off that scam so well. इसे try करके देखो अपनी जिंदगी में. Just be hot and classy no matter what's going on and you will look like a winner all the time. आपको कैसे लगता है ये स्कैम मैं बचपन से पुल कर रही हूँ? एंड टू फिगर आउट मोर अबाउट दिस स्कैम ऑफ माइंड, यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो नाउ गो अहेड एंड डू व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए दैट यू एक्चुअली लव हर अ लॉट और आप उसके लिए महंगे महंगे बैग्स ला सकते हो. आपने एक सेकेंड हैंड बैग खरीद के दिया उसे और उसे लग रहा है कि आप उसके लिए ब्रांड न्यू बैग लेकर आए. What kind of loser boyfriend you are? But usse koi farak nahi padta because I'm not going to judge you. Whatever your confession is, hit me up on Insta ya FB and we will get talking, baby. Mere saath line par hai meri mystery caller. Hello, naughty girl.
2: Hi, Roshi.
1: How are you?
2: I am very good.
1: Very I'm good nahi ho. Aap thode se superficial bhi ho. Aapne mujhe apni confession bata di hai Instagram pe. To zara mujhe khul ke batana ki aapki zindagi mein ho kya raha hai.
2: बिल्कुल खुल के बताऊंगी. सो बेसिकली आई वॉज डेटिंग अ गाय हु वाज 10 ईयर ओल्डर देन मी. सोसाइटी क्लब में मिला था वो, बट ही वाज नॉट दैट फन. और मुझे कॉलेज में एक हॉट लड़का मिल गया, सो आई डंप्ड हिम.
1: ओके, ऑब्वियसली यार 10 साल बड़ा है उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी कॉलेज में हॉट बंदे. आई एम नॉट जजिंग यू, डू कैरी ऑन. फिर
2: तो अब उसके स्टार्टअप को 6 to 7 million की इन्वेस्टमेंट मिली है.
1: किसके स्टार्टअप को?
2: एक्स के, जो मेरे से 10 years ओल्ड,
1: जो आपसे 10 साल बड़ा, उसके स्टार्टअप को.
2: यस, 6 to 7 million का वो मिला इन्वेस्टमेंट.
1: ओके,
2: ठीक है. सो आई वाज लाइक व्हाट इफ आई डेट हिम अगेन. मतलब आई वाज थिंकिंग क्योंकि पीछे तो पड़ा ही है.
1: ऑफ कोर्स
2: एंड मनी मैटर मोर.
1: और आप ये खोल के बोल रहे हो कि भाई पैसा मैटर्स. उसके बाद जब 6 million नहीं थे देन यू डिडंट रियली केयर फॉर हिम. अब 6 million की इन्वेस्टमेंट है तो वो क्यूट गाय का क्या होगा जिसको आप कॉलेज में देखकर इतने पागल हो रहे थे.
2: अब जो होना है हो जाएगा. मैं बस कंसेशन कर रही हूँ, मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए. मतलब जज भी करे तो इट्स ओके, नेवर माइंड, माय लाइफ, माय रूम, माय चॉइसेस.
1: Babe, you're a real rock star. रोशिफाई कर दूं आपको या उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको खास?
2: नहीं नहीं यार, वो तो करो, वो तो चाहिए.
3: You've been roshified.
1: ये $10 million का रोशिफिकेशन आपको मिला है फ्री फ्री फ्री. डू यू नाउ लव मी एज मच एज यू लव दिस?
2: थैंक यू थैंक यू.
1: यू आर वेलकम वेरी मच. आपकी सुपरफिशियलिटी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. बट आई लव योर ऑनेस्टी यार, मनी मैटर्स मोस्ट. अब जो है सो है, करेक्ट?
2: हाँ, जीना भी तो है ना.
1: और 7 million के साथ जो जीना होता है वो काफी कंफर्टेबल होता है. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, ट्रस्ट मी आई एम नॉट जजिंग यू. ओके, आई माइट कॉल यू सुपरफिशियल बट मेरे दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार है. एंड इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट लव, हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RO CHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर। जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2 9033647244, दैट इज 9033।

0: ਤਾਂ ਜੀਤੂ ਰਾਜ ਓਨਲੀ ਔਨ ਮਿਰਚੀ ਇਟਸ ਹੌਟ।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Listener, mai back to back gana sunega. Back to back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

अब तुमने मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट किया था और कहा था कि तुम तो मेरी रॉकस्टार हो, अगर तुम किताब नहीं लिखोगी तो और कौन लिखेगा. और आज मैंने लुक बैक एट माय लाइफ, शायद मैंने इतना सब कुछ नहीं अचीव किया होता अगर तुम तब मेरे साथ नहीं होते. और आज ये सिर्फ एक स्वीट सिंपल अनकंडीशनल थैंक यू मैसेज है. थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट. ये एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट मैंने अपने एक्स को भेजा, बिकॉज यू नो व्हाट, मैं कल बैठकर सोच रही थी कि अगर हमारी जिंदगी में एक्सेस नहीं होते तो शायद बहुत सारे लाइफ लेसन हम नहीं सीखते. किसी एक्स ने मुझे ये सिखाया कि मुझे सामने वाले इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का चांस देना चाहिए. किसी ने मुझे ये सिखाया कि रेड फ्लैग्स इकट्ठे करते करते रेड कार्पेट बनाने का कोई फायदा नहीं है एक रिलेशनशिप में. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ कुछ एक्सेस ने मुझे ये सिखाया दैट लव इज ट्रूली अ ब्यूटिफुल थिंग. अगर वो ज्यादा देर ना भी रहे तो भी एट द एंड ऑफ द डे वो प्यार था और वो ही इन इट सेल्फ काफी स्पेशल है. तो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज, अगर आपकी जिंदगी में भी एक खूबसूरत सा एक्स है जिसके साथ कोई बिटरनेस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, यू बोथ मूव्ड ऑन एंड यू आर बोथ हैप्पी, मे बी अ थैंक यू नोट वुडंट बी सच अ बैड थिंग. हो सकता है आप लोग दोस्त बन जाओ. इसे ट्राई करके देखो इफ योर पार्टनर, करंट पार्टनर, डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट एंड टेल मी हाउ इट वर्क्स फॉर यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप एंड व्हाइल यू डू दैट लेट मी जस्ट टेल यू द ओनली थिंग आई कीप सेइंग, जिसके पास लव है उसके पास सब है एंड आई लव यू लोड्स.

अब तो बहुत टाइम हो गया तुमसे बात किए, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू सेंड यू अ मैसेज टू से थैंक यू. बहुत साल पहले जब मैंने सोचा था कि शायद मुझे एक किताब लिखनी चाहिए,

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika and it's time for the hottest countdown of the week. यानी गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं. इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है. काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आई

0: सारे कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौड़ के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ आप कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कहीं अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेस को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा. आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे. क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है, इसकी अब आदत हो गई है. ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है, अब हमें उससे ही डर लगता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है. लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक. उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है. आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना. गाने का नाम है तारे. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 8.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगले वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है।
0: गाने का नाम है मेरी नींद उड़ गई है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज। साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से। आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी। आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर। एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा। एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था। ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत ही सिंपल था। कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था, ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है। बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था। एंड इस गाने में पूरी वही

वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया. दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील. एंड अगर आप किसी के क्रश हो तो दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. साल 2002 का गाना है, बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन. वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना. दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना एडिट ऑफ डेट. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to those simpler times. Gaane Ka Naam Hai Meri Neend Ud Gayi Hai by A Band of Boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanek on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic ke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A Band of Boys ka ek gaana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे करने का और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे करने का पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग, राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे, गाने का नाम है दरमिया. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 6.

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर। जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: किसी की आवाज़, हर्षनु सिदीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं के कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब आप इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस ऑल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था, फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन। लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए, एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में, अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्पररी स्पेस में वी गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था विच वॉज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। तो उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन जीत कर, हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था, एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है, एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par, mera handle is at RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Gaana number 10 se gaana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the top 2 songs, kuch aise bhi gaane hote hain which deserve a special shout out. Aise hi gaane ke bare mein baat karne wali hoon. It's called Boom Shakalaka, tere bandook shakalaka. गाने का नाम है बूम शाकलाका एंड आई एम श्योर ये गाना ये फ्रेज आपने जरूर सुना है. गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा बिकॉज इट्स एवरीवेयर. ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है. वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना. हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के इसे पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है. छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है. एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट. कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट. बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला. उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया. उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन. हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं पर पढ़ते सारी शायरी जॉन एलिया जैसी है. इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे. पर अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ

मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूफ कर रही हूँ दैट बूम शाका लाका इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस धंडा न्योली वाला कृष्णा का गाना दिस इज बूम शाका लाका अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनेका एंजॉय

This song is a perfect concoction of Krishna, Dhandanyoliwala, Haryanvi rap and all that combined into this attitude package. Such an addictive hook that boom shakalaka. Agar aapne aaj pehli baar hamare show ke zariye suna hai, to I'm sure ki aap agle do din tak ye line bolte hi rahenge. At RJ Kanek on Instagram par aao, mujhe batao aise kaun se gaane hain jo aap kabhi social media par ya kisi trend mein sunte ho and then wo bas dimag mein atak jaate hain. Back on the countdown, agle dono gaane वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करा है उड़ी उड़ी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा. 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका, एंजॉय. नंबर 2.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो हेलो, वेलकम। आज मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करूंगी। आज एक ऐसी मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, मेरे मम्मी पापा का बताना है कि ये फिल्म बहुत चली थी उनके जमाने में, एंड लोग ना बार बार इस फिल्म को देखने जा रहे थे। नंबर वन, ये उस टाइम की इनिशियल जो मिस्ट्री फिल्म्स बन रही थी ना, उनमें से एक थी। नंबर टू, इसमें बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन जो कई सारी और फिल्में कर चुकी थी वो थी, एंड हर नेम वाज साधना। मनोज कुमार थे इसमें। इट वाज डायरेक्टेड बाय राज खोसला, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो भाई इसकी ढेर सारी बातें होंगी, एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे गाने हैं जो लता जी ने गाए हैं, मैं आपको सुनाऊंगी एक एक करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।
1: सावन का महीना पवन करे सो,

0: レソール。
1: ババ抜かれショール。
0: あれ、ババショールないソール、ソール、ソール。

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा सुनो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बॉस को कोई आइडिया पसंद नहीं आया हो जो तुमने दिया हो, बट फिर भी उसने तुम्हें इतनी फ्रीडम दी हो कि अच्छा जाओ भाई कर लो अपने मन की, फिर देखते हैं, एंड फिर उसके बाद तुम्हारे आइडिया ने झंडे गाड़ दियो? ओहो, व्हाट अ प्राउड फीलिंग, है ना? पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और ऐसा ही हुआ था एक गोल्डन गाने के साथ फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी जिसकी आज बातें हो रही है। सो ये गाने की पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को 5 बार रिजेक्ट किया प्रोड्यूसर NN सिप्पी साहब ने एंड डायरेक्टर राज खोसला साहब ने, और बार बार इस गाने की कॉम्पोजिशन बना करके ना इसको पेश किया जा रहा था। अब हुआ ये कि मदन मोहन, हु लव्ड द सॉन्ग, वांटेड कि कुछ भी करके ना इस गाने को रख लिया जाए, रिटेन कर लिया जाए। तो उन्होंने 6th कॉम्पोजिशन बनाई। जब राज खोसला ने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम्हें बहुत पसंद है चलो एक बार और बना के दिखा दो, फिर क्या हुआ जब 6th कॉम्पोजिशन सुनी राज खोसला ने, उन्हें तब भी नहीं पसंद आया। बट फॉर्चुनेटली बिकॉज दिस सॉन्ग हैड टू बी अ मैसिव हिट, उस दिन स्टूडियो में आ गए मनोज कुमार और उन्होंने इस गाने को सुन लिया। मनोज कुमार ने कहा कि दादा ये तो बेहद खूबसूरत गाना है, ये आगे जाकर के जैसे ही रिलीज होगा ना ये गाना मैसिव हिट होगा। इस गाने को रिटेन किया गया एंड उसके बाद रेस्ट वॉज हिस्ट्री। वो कौन सा गाना है? नहीं, आपको मेरी आदत तो पता है, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, थोड़ा सा ना मैं आपको सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ, जिससे आई हैव द श्योरिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स। तो यहीं पे बने रहो श्रेया के साथ ऑन पुरानी जींस, मैं बताऊंगी किस गाने की बात हो रही है।

0: कुछ कहता है।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
3: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
2: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

थोड़ी देर पहले आपको मैं सस्पेंस में छोड़ के गई थी, अब बताती हूँ पूरी कहानी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे क्या पूरी दुनिया को बेहद पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेट्रो फैन हैं तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली होगा। लेकिन इस गाने के पीछे ना एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। ये गाना जब कंपोज हुआ और कंपोज करने वाले थे मदन मोहन साहब, तो वो ना एनएन सिप्पी जो कि प्रोड्यूसर थे ऑफ वो कौन थी के, एंड राज खोसला डायरेक्टर, उनके पास जब लेकर के गए ना, इन दोनों को ही इस गाने की कॉम्पोजिशन नहीं अच्छी लगी। एंड नॉट जस्ट वन टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल फाइव कॉम्पोजिशंस वर रिजेक्टेड बाय देम। तो फिर ना राज खोसला जो कि भाई ऑफकोर्स यू नो डायरेक्टर थे, जानते थे कि एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है, उन्होंने मदन मोहन से कहा कि अगर तुम्हें ये गाना इतना ही पसंद है चलो एक और ट्राई कर लो। मदन मोहन ने एक और बार इसको कंपोज किया। एक और बार जब ये सर्व किया गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, उन दोनों ने इसको फिर से मना कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली क्योंकि ये गाना इतना ह्यूज हिट होना ही होना था, इसकी डेस्टिनी थी एंड ये इतना खूबसूरत था कि उस दिन मनोज कुमार स्टूडियो में आ गए। मनोज कुमार ने जब ये गाना सुना उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये इतना खूबसूरत गाना है, इसको डेफिनेटली रखा जाए इन द फिल्म। फिर इस गाने को लता जी ने गाया और ये गाना आज तक हम सबकी प्लेलिस्ट में है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू एंड द सॉन्ग इज ओहो हो। लता जी की आवाज में पूरा गाना अप नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया ऑन पूरा।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई

0: बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतू राज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतू राज।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

ये स्क्रिप्ट थी किसी और की, बनाने वाला कोई और निकला। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज ना बात हो रही है द मैसिव हिट, द सस्पेंस फिल्म या फिर हॉरर फिल्म कह लो उस जमाने की, वो कौन थी। आपको पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ पूरी कहानी। सो 1950s में गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म लॉन्च करी जिसका नाम था रास। इस फिल्म में थे सुनील दत्त साहब, वहीदा रहमान एंड रहमान जी। इट वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय शशि भूषण जी। पता नहीं क्या हुआ कि 10 दिन के बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म की शूटिंग रोक दी। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पे फिर से काम किया और इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट में सुनील दत्त को नहीं बल्कि खुद को रखा। फिर से इसका नाम रखा गया रास। सो नाउ दिस टाइम वहीदा रहमान थी, रहमान थे और गुरुदत्त साहब थे। 12 रील्स इस स्क्रिप्ट की, यानी फिर इसी फिल्म रास की शूट हो गई। एंड देन अगेन कुछ हुआ कि गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को रोक दिया। एट दैट टाइम द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द नॉवल द वुमन इन व्हाइट। राज खोसला साहब उस समय गुरुदत्त साहब को असिस्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और उन्होंने तभी सोच लिया कि इस अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट को मैं पूरा करूंगा, मैं बनाऊंगा एक फिल्म। सो ये जो आप वो कौन थी कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो स्क्रिप्ट थी ये राज खोसला साहब ने इसी फिल्म से उठाई थी जब वो असिस्ट कर रहे थे गुरुदत्त साहब को, और उन्होंने रास की जगह इसको नाम दिया वो कौन थी। उसके बाद तो भाई बॉक्स ऑफिस पे भीड़ लग गई थी टू वॉच दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ। और श्रेया से अगर 1-to-1 बात करनी है, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ, दो ऐसी जगह है जहाँ आप भी बोल सकते हो, इस फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव माई हैंडल, वहां पे बता देना जो भी बताना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। रेडियो मिर्ची के
1: साथ 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी को इस फिल्म के लिए लिटरली उनके न्यू बॉर्न बेटे विशाल की दुहाई देनी पड़ी थी डायरेक्टर राज खोसला एंड प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। मनोज कुमार उस टाइम के सुपरस्टार, वो जल्दी जल्दी फिल्मों को हाँ ही नहीं कहते थे, यूज्ड टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। सो इस चक्कर में उन्होंने एक दो साल कुछ काम ही नहीं किया। अब ऐसे में भाई प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब चाहते थे कि किसी तरह वो इस मिस्ट्री फिल्म में आ जाए, वो कौन थी में मनोज कुमार जो है वो लीड रोल प्ले कर ले। मनोज कुमार वॉज लिटिल स्केप्टिकल, ही वॉज डाउटिंग कि मिस्ट्री फिल्म है, थोड़ी सी हॉरर फिल्म है, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ।

ऐसे में भाई डायरेक्टर राज खोसला ने उनसे कहा कि भाई अभी अभी तुम्हारे घर पे लड़का हुआ है और ये बहुत शगुन की बात है, तुम देखना ये फिल्म करोगे और सुपर डुपर हिट होगी फिल्म। मनोज कुमार ने अपने बेटे विशाल का नाम सुनकर के फिल्म को एक्चुअली हाँ कह दी एंड द फिल्म डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, यानी वो कौन थी की, और इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। कहीं भी मत जाना, कुछ गानों के उस पार ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस फिल्म, सब बताऊंगी, कम राइट बैक।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

दस सालों तक इस गाने को किसी फिल्म में जगह नहीं मिली, क्योंकि फिल्म में कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मदन मोहन साहब अपने खजाने में ये धुन को लेकर के चल रहे थे। 1950s में उन्होंने ये धुन बनाई थी, एंड 1960s में जब वो कौन थी आई, यानी ये फिल्म जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, साधना जी की, मनोज कुमार की, एंड डायरेक्टेड बाय राज खोसला, तब उनके इस एवरग्रीन गाने को, इस ब्यूटी को एक्चुअली में फिल्म में जगह मिली। मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि आपको लगेगा क्या बात कर रही हूँ श्रेया, ये गाना 10 साल तक बन के रखा हुआ था। अभी बताऊंगी, गाने सुन करके वापस आओ। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मदन मोहन साहब अपने खजाने में इस धुन को लेकर के 10 साल तक घूम रहे थे। कुछ डायरेक्टर्स को उन्होंने अप्रोच भी किया, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, ये गाना हमारी फिल्म में तो नहीं चलेगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है हमारी फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज वी आर टॉकिंग अबाउट वो कौन थी, इंडिया के सिनेमा के इनिशियल ईयर्स में आई एक मिस्ट्री फिल्म, एक सस्पेंस फिल्म, जिसमें थी साधना जी, मनोज कुमार, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, और इस फिल्म के गाने ओ हो ऑल कंपोज बाय मदन मोहन साहब। तो अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना नहीं है, ये मास्टरपीस है। लता जी ने इस गाने को गाया था, और ये गाना बहुत टाइम तक, नॉट गाना एक्चुअली, बट ये जो धुन थी, समझ ही गए होंगे आप, ये धुन मदन मोहन साहब ने ना बस कंपोज करके रखी हुई थी।

जब वो कुछ डायरेक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं हमारी फिल्म में तो ऐसा कोई सस्पेंस मिस्ट्री हॉरर वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली 1962 आफ्टर 10 ईयर्स व्हेन राज खोसला मेड वो कौन थी, इस गाने को अपनी सही जगह मिली। एंड गाना कौन सा है जरा गौर फरमाइए, देखो एकदम हॉन्टेड वाली म्यूजिक और साथ में लता जी की आवाज। इट इज नन अदर देन नैना बरसे। कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

वहां के लोकल्स ये देख करके हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लड़की के मुंह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो उसका ये वाला जो गाना है ना, नैना बरसे रिम झिम, जो लता जी की खूबसूरत आवाज में है, इसके पीछे ना एक और कहानी है। सो होता ये है कि कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है, तो साधना जी को इस पे ऑफकोर्स गाना गाना था, मतलब मुंह चलाना था, लिपसिंग करना था। अब हुआ ये कि लता जी कोई कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, तो ये गाना डब नहीं कर पाई। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि ठीक है, तुम लोग कश्मीर में हो ऑलरेडी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वोकल्स गा करके भेज देता हूँ और बस साधना से लिपसिंग करा लेना। अब क्या हुआ, क्योंकि ये गाना आउटडोर पे शूट हो रहा था, तो कश्मीर के लोकल्स इकट्ठा हो गए देखने के लिए। और शूटिंग इमेजिन इन 1960s, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, इतनी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती थी, आराम से लोग शूट वूट कर लेते थे। तो लोकल्स ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, हीरोइन के मुँह से हीरो जैसी आवाज़, यानी लड़की के मुँह से लड़के की आवाज़ कैसे निकल रही है। इट वॉज अ मेजर टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। फिर खैर जब लता जी वापस आईं, उनसे गाना डब कराया गया एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूं श्रेया।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

महबूब खान काफी नाराज हुए प्रेम चोपड़ा से, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज ना वो कौन थी की बात कर रहे हैं। वेल, इंडिया की इनिशियल हॉरर फिल्म्स कह लो, मिस्ट्री फिल्म कह लो, सस्पेंस फिल्म कह लो, उनमें से आती है वो कौन थी। साधना जी थी, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, मनोज कुमार थे इस फिल्म में। एंड भाई महबूब खान चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा जो इस फिल्म में एज विलेन की तरह लॉन्च हुए वो एक हीरो की तरह लॉन्च होते। सो महबूब खान ने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बनाई थी एंड ही वांटेड कि वो प्रेम चोपड़ा को ना एक हीरो की तरह पेश करेंगे अपनी आने वाली फिल्मों में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने ऑलरेडी ये फिल्म कर ली और उसके बाद ये फिल्म इतनी हिट हुई, प्रेम चोपड़ा एज विलेन इतने हिट हुए कि भाई उसके बाद तो लोगों ने ना उनको नेगेटिव शेड में ही देखना शुरू कर दिया था। तो उनके पास जितने भी ऑफर आते थे वो एज विलेन ही आते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक चलती रहेंगी। श्रेया के साथ हो आप। और हाँ, अगर बैक टू बैक मुझसे इंडिविजुअल बात करनी है तो फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज RJ श्रेया विद लव। दैट्स RJ SHREY श्रेया विद लव।

0: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके,

मनोज कुमार जी की एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो नहीं होते थे, वो अपनी फिल्मों के म्यूजिक में भी बैठते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी डायलॉग्स भी लिखते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। पुरानी जीन्स पे आपूज श्रेया के साथ एंड मनोज कुमार यूज टू बी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन द पिक्चर्स ही यूज टू डू। सो वो कौन थी जब उन्होंने हामी भरी ये फिल्म करने के लिए? इंडिया की इनिशियल ईयर्स की सस्पेंस फिल्म थी, थ्रिल फिल्म थी ये, थ्रिलर कह लो। तो इसमें साधना जी के साथ थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार को कुछ सीन्स, कुछ लिखे हुए सीन्स जो कि ध्रुव चैटर्जी ने लिखे थे, वो पसंद नहीं आए थे। तो आपको पता है उन्होंने खुद ये सीन्स लिखे, रीराइट के, एंड दे वर रियली अप्रिशिएटेड। पुरानी जीन्स पे वो कौन थी की बातें विद मी श्रेया। तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर। जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2 9033647244, दैट इज 9033।

0: Ganpati Bappa to 903-364-7244. That is 9033 Mirchi.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मनोज कुमार जी को इस फिल्म की रियल हीरोइन ताज होटल के बाहर दिखती थी, जो उनको काफी बार डरा चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, वो कौन थी। तो इसमें ना एक डॉफ लेडी की जरूरत होती है। अब ना डायरेक्टर राज खोसला उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको वो मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में मनोज कुमार, हु इज ऑल्सो द एक्टर ऑफ द फिल्म, और उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ द फिल्म रीराइट भी किए थे, उनको याद आया कि जब जब वो ताज होटल के बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें ऐसी ही एक डॉफ बेगर दिखती हैं, जो कि उनको कई बार डरा चुकी हैं। तो बस उन्होंने सजेस्ट किया राज खोसला को, राज खोसला उनको मूवी के सेट पे ले आए, एंड शी वॉज एक्चुअली द हीरोइन ऑफ द फिल्म। क्योंकि फिल्म हॉरर थी, तो इनको देख करके स्क्रीन पे ना बहुत लोग डरा करते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के

0: कुर्सियों पर बैठकर देख लो ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे? सही है।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स में आवो श्रेया के साथ, जाने का टाइम यानी लेट्स हिट द हाईवे। और आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जिनका शायद पहला प्यार पूरा नहीं हुआ, या फिर you know, अभी भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जिनको वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उतर आए, लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं पाते, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते हैं। उनके लिए ये दिल तो कभी करता होगा और सोचता होगा ना ऐसा,
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल।
0: कैसे कैसे ख्याल आते हैं आज ये गाना
1: बनाया गया है मेरे लिए।
0: करेक्ट, तो शायद कोई खास को ये गाना आज आपकी याद दिलाते हैं। On that note, this is Shreya signing off. We'll see you tomorrow. और हाँ, Facebook, Insta पे RJ Shreya would love. That's my handle. Good night.

0: Jumara.
1: Jumara. Jumara. Jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर। जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2 9033647244, दैट इज 9033।

0: पार्टिसिपेट कीजिए टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा टू 9033647244 दैट इज 9033 मिर्ची
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: Of course, मेरी बेटी, she is damn smart.
0: पक्का, final answer.
1: Final answer. जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो. मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट. अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए.
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची. रेडियो मिर्ची इट्स ऑन
3: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा।

0: जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, वह इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतुराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौरमंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: किसी को उनकी गलती या नेगेटिविटी कैसे बताएं ताकि वो समझ भी जाएं और हर्ट भी ना हो, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो जब ऐसे हुजूम था बच्चों का, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो इस बारे में बात होने लगी और मैंने कहा कि भाई चलो और बात करते हैं इसमें। तो वो कहते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल उन्हें दिए। मैंने कहा देखो यार ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपके टाइम पे शायद ऐसा ना होता, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो मैंने कहा देखो मुझे तो सही नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि मुझे उस कॉन्वर्सेशन में ऐसा उनको बिल्कुल प्रतीत नहीं कराना था कि भाई तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं कर सकते, वरना वो बोलना बंद कर देते। तो मैं धीरे धीरे बोल रहा था तो एक ग्रुप था बच्चों का, उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बोली और उसमें एक लीडर टाइप थी, उसने कहा कि मैं तो जाके बोल देती हूँ उसके मुंह पे कि आई डोंट लाइक यू। मैंने कहा देखो बेटा ये तो बोलना सही नहीं है किसी के मुंह पे कि मुझे पसंद नहीं। बोले नहीं, मैं एकदम फ्रैंक हूँ और अगर वो गलत है तो गलत है। मैंने कहा कल को वो भी आके तुमको बोलेगी। बोले हाँ बोल सकती है, वो बिल्कुल सही है, अगर मैं उसकी सच्ची दोस्त हूँ तो वो बिल्कुल उसको भी बोलना चाहिए और मुझे बोलना चाहिए। मैंने कहा ये जो बात आपने कही बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को जाके मुंह पे बोलना कि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा पहनने का स्टाइल पसंद नहीं है, तुम्हारे कपड़े पसंद नहीं है, तुम्हारे लिखने का स्टाइल पसंद नहीं है, तो सही नहीं है। लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, और वो बहुत फोर्सफुली बोल रही थी मुझे और उसका दोस्त भी था, वो कहते हैं नहीं मैं अगर उसकी दोस्त हूँ और मैं अगर उसका दोस्त हूँ तो मेरा हक बनता है उसको बताना कि वो सही नहीं है, ताकि आगे जाके उसको दुख ना हो। तो मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसको जरूर ये बात बोलूंगा। तो मैं हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बाद मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं सुन रहा था उनको और वो जिस तरह से पैशनेटली ये बात बोल रहे थे कि मेरा दोस्त है तो मैं जरूर जाके उसको बोलूंगा, और मैं उनको बोलने की कोशिश कर रहा था कि आपको उनको हर्ट नहीं करना है। और वो कह रहे हैं वो हर्ट तो कोई बात नहीं, सच तो सुनना पड़ेगा उनको। तो ऐसे केस में क्या सलाह देनी चाहिए?
4: परमात्मा हमेशा कहता है सत्यता को सभ्यता से बोलो।
3: हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए वो तो समझ तब आएगी जब आपको ये बात पता हो या किसी ने सिखाई हो। लेकिन अगर आप शायद माहौल ही लीडरशिप का हो या जो भी है, बच्चे कहीं से सीखते होंगे, अब उसमें संस्कार बैठ गया है कि मैं तो जाके बोलूंगी।
4: हाँ, तो शी विल लूज अ फ्रेंड दैट ग्रेजुअली। उसके फिर अगर आप नहीं सीखेंगे ये चीजें तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बेयर करने पड़ेंगे ना। अगर आपको लगता है नहीं नहीं जो बोलना है सच बोलना है, डायरेक्ट फ्रैंक होना है, बोलो, डिग्निटी ग्रेस से बोलो, पर आपका पर्पस क्या है पीछे? आप सामने वाले को किसी चीज के बारे में रियलाइज कराना चाह रहे हैं, एम्पावर करना चाह रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप देखें ना कि आपका जो कर्म है उसका कुछ इम्पैक्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसका इम्पैक्ट ये है कि सामने वाला हर्ट हो रहा है तो कितनी बार वो उस चीज को सहन करेगा? एक्चुअली यू विल लूज अ फ्रेंड। फ्रेंडशिप में तो कम से कम आप नहीं चाहेंगे कि सामने वाला आपको हर्ट करे। दैट इज वन रिलेशनशिप यू चूज। यू वॉन्ट योर फ्रेंड्स टू बी नाइस एंड दे वॉन्ट, कुछ कहना भी है तो आराम से कहें। सो अगर हम किसी चीज के प्रति बहुत पैशनेट हैं और वो गलत है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो आते हैं ना। आई थिंक एज अ फ्रेंड हमें सोचना है कि सिर्फ बात कहना जरूरी है, और अगर सामने वाला उसमें बहुत हर्ट हो रहा है तो क्या वही बात किसी दूसरे तरीके से कही जा सकती है?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 89.4।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, मोहम्मद मैंगलोर से लिखते हैं कि ईगो और जलन से कैसे बचें और दूसरों की सक्सेस को अपनी सक्सेस जैसे कैसे सेलिब्रेट करें और कैसे महसूस करें कि हम भी उसकी सक्सेस में इंक्लूडेड है। बहुत अच्छा सवाल है।
2: जलन कब होती है? जब हम कंपेयर करते हैं।
1: जी,
2: कंपैरिजन, अगर हमें ये समझ जाए कि दो सोल्स एक डिफरेंट जर्नी पर है, मेरे कर्म से मेरा भाग्य है, उनके कर्म से उनका भाग्य है, तो हमें किसी की भी सफलता को देख करके जेलसी नहीं होगी। वी आर ऑन अ डिफरेंट आर ओन इंडिविजुअल जर्नी।
1: जी,
2: जलन कब होती है? जब मुझे लगता है शायद उसने मेरा क्रेडिट ले लिया।
1: हाँ।
2: शायद ये मुझे मिलना था तो उसको मिल गया।
1: जी,
2: समवेयर वो इनसिक्योरिटी और जेलसी सेट इन होने लग जाती है। जेलसी का रूट कॉज कंपैरिजन है।
1: हाँ।
2: और कंपैरिजन में आप क्या करते हैं कि उसको मिला मुझे नहीं मिला, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आपको वो

0: मिलेगा जो आपके कर्म है, उनको वो मिलेगा जो उनके कर्म है। तो आप मन किसी की सफलता को देखकर जेलस होते ही नहीं हो, आपको पता है कि उनके कर्म का भाग्य उनके सामने लौट कर आया है। जो हम कई बार कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और कोई छीन नहीं पाया है। सो कंपैरिजन इज दैट ओल्ड एज डीमन दैट रॉब्स यू ऑफ हैप्पीनेस।
1: क्या बात है,
0: आपकी खुशी को वो खत्म कर देता है।
1: तो कंपैरिजन मत करो मोहम्मद, और खुश रहो और

0: करने में खुश होंगे, उसको दुआएं देंगे, तो वही एनर्जी आप तक लौट करके आएगी।
1: तो सफलता की जो फसल है, सफल की जो फसल है वो तुम आज बो, अगर आप सफलता से ही ईर्ष्या करने लगोगे तो सफलता आपके घर पे कभी दस्तक नहीं देगी।
0: सफलता का मतलब भी क्या है, हिंदी में बहुत सुंदर है, इंग्लिश में हम कहते हैं सक्सेस, हिंदी में हम कहते हैं सफलता। सफलता का मतलब है सफल करना। तो सफल किसको कहते हैं, एक्चुअली हमारे हिंदी में बहुत सुंदर वर्ड है, आप उस व्यक्ति को सफल कहते हो जिसको जो कुछ मिला है वो उसको सफल करता है, चाहे वो उसका समय है, टैलेंट है, स्किल है, धन है, जब आप उसको दूसरे के बेनिफिट के लिए लगाते हो, उससे किसी का कल्याण होता है, जिसको हम कहेंगे दानी है, महादानी है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, सच्चे अर्थों में वो सफल है। किसी के पास बहुत है लेकिन मतलब वो सफल, उसको सफल करना नहीं आता, उसको लगाना ही नहीं आता, क्योंकि जब हम सफल करते हैं तो वो हमारा भी बढ़ता है। आप कभी भी नोट करना, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज भी अच्छे से बनानी आती है, सफल करने का मतलब है आप किसी और को सिखाते हो,
1: सही बात है,
0: तो वो स्किल आपकी भी बढ़ेगी, और उनको आपने सिखाया तो उनसे दुआएं मिलेंगी, तो उनकी दुआएं और आपकी जो स्किल बढ़ रही है वो आपको और सफल करती जाएंगी।
1: क्या बात, बहुत बढ़िया।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सही समय पर सही एक्शन लेना या अपनी गलतियों से सीखना कितना जरूरी है, आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: लेकिन इस उम्र में वो समझ नहीं होती, और शायद अगर आप मैं उसको जाके बोलूं कि यू लूज अ फ्रेंड, वो बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो उसको भी ये समझाना है कि बेटा तुम बोल तो सही रहे हो लेकिन शायद तुम्हारा तरीका गलत है। वो समझाएं कैसे?
4: कभी कभी वो समझ जाते हैं पर करना नहीं चाहते। यू नो, ईगो हमेशा कहती है नहीं, माई वे इज द राइट वे। कभी आप समझ से सीख जाते हैं, जब आप समझ से नहीं सीखते, कई बार देखते हैं ना किसी का हाथ जलते आप देखते हैं, आपको पता है ये चीज जलाती है। और कभी कभी जब आप वैसे नहीं सीखते तो फिर जब आपका हाथ जलता है तो आप सीख जाते हैं। आप ऐसे नहीं सीखते तो पेन अवेकनिंग का काम करता है। जीवन में कितना कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, नहीं सीखते कई बार।
3: सही बात है, जब खुद पे होता है तब आप अपने आप सीख जाते हैं।
4: आई फील उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए, वो तो एक्सट्रीम केस है, पर पेन अवेकनिंग का काम तो करता ही है। सिंपल अगर बॉडी के लेवल पर भी आप देखें,
3: सही बात है,
4: कितनी सिंपल सी बात है कि एक हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो हेल्दी खाते हैं?
3: बहुत कम लोग।
4: मना आजकल
3: एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं?
4: एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं। आज एक बच्चे को पूछो, बड़े को पूछो, सबको पता है कि अच्छा अच्छा खाना और एक्सरसाइज खानी करनी है। फिर भी कहेंगे नहीं, अच्छा खाना, हेल्दी खाना अच्छा नहीं लगता, टेस्टी फूड अच्छा लगता है, वट एवर। वी आर मेकिंग चॉइसेस, वो चॉइसेस करते जाते हैं, लेकिन जिस दिन बीमार होंगे और दर्द होगा फिजिकल, उस दिन अपने आप करेंगे।
3: सही बात है।
4: तो अब ये थोड़ी ना कि उनको पता नहीं था और उनको समझ नहीं थी, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि सामने वाले को समझ नहीं है।
3: सही बात।
4: कभी कभी आपको समझ होती है पर आप वो करना नहीं चाहते, तो फिर वो लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस आपको फोर्स करते हैं करने के लिए। कहते थे ना कि समय पर कर लो नहीं तो समय आपको धोखा देगा। मना
3: समय सिखा देता है, समय सबसे बलवान।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी बेटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही घर के काम भी होते हैं, फिर भी पढ़ना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ।
4: कभी कभी सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं, माना आप चाहें कि आप 8 घंटा पढ़ना चाहें, 10 घंटा पढ़ना चाहें, वो ना भी पॉसिबल हो रहा हो तो भी होप नहीं छोड़नी चाहिए
3: जी।
4: जो भी सर्कमस्टांसेस है उनको एक्सेप्ट करना और उनमें खुश रहना, ये पहले जीवन की बड़ी सफलता और जीत होती है
3: जी।
4: मना हमें लगता है कि हम पढ़ेंगे, पढ़कर कुछ बन जाएंगे तो जीवन में खुशी आएंगे। आखिर तो हर व्यक्ति को शांति और खुशी चाहिए होती है
3: जी।
4: तो जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं आप पहले उसको एक्सेप्ट करें, बहुत दिल से अपना रोल प्ले करें, चाहे आप एक वाइफ हैं, एक मदर हैं, वो सारा रोल अच्छे से प्ले करें, और जितना समय आपको मिलता है अभी उसमें आप पढ़ाई करना शुरू करें। मुझे 100% इस चीज पर फेथ है कि जब हम अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करते हैं तो बाकी सब कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को और अपनी जो हमारी डिजायर्स उसको पूरा कर सके, क्योंकि वो हमारे से संतुष्ट होते हैं
3: जी।
4: तो उनको संतुष्ट करना, उनकी दुआएं लेना, दुआएं जीवन में बहुत आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ हमारी इच्छाएं और सपने ही आगे नहीं बढ़ाते, बहुत करके कई बार कईयों की दुआएं हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है।
3: सही बात।
4: मुझे ये कहानी पिछले दिनों एक व्यक्ति था जो रोज होटल में

0: करता था और भीड़ के अंदर चुपचाप खाना खा करके आ जाता था और पैसे नहीं देता था।
1: अच्छा,
0: रोज ऐसे करता था और ऐसे खा करके आ जाता था और कई लोग उस चीज को नोट कर रहे थे। तो उसमें से किसी ने, जो होटल का मालिक था, उसको बताया कि आपको पता है ये रोज ऐसे करता है। उनको लगा वो बताएंगे ना उस मालिक को, तो उसको लगेगा अच्छा ऐसा करता है, मुझे पता नहीं। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है।
1: अच्छा,
2: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्ची।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से क्यों नहीं करनी चाहिए, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बच्चा बहुत क्लास 11 का बच्चा है, उसने बहुत कमाल की एक बात पूछी और मुझे कहीं ना कहीं अपने बचपन की याद आ गई। वो कहता है कि मेरे आसपास जितने मेरे दोस्त हैं ना, उन सबको पता उनको क्या करना है। वो सब लग गए हैं कि मुझे कॉलेज में ये करना है, मुझे लाइफ में ये करना है, मेरा करियर बहुत क्लियर है, तो वो अलग अलग ट्यूशंस पे जा रहे हैं, उनको पता है। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट फिगर्ड आउट, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मे बी आई एम गुड फॉर नथिंग। उसमें धीरे धीरे रिजेक्शन बैठने लग गया, क्योंकि कहीं शायद उसके पेरेंट्स का भी प्रेशर है, उसके टीचर्स का भी प्रेशर है, काउंसलर्स का भी प्रेशर है कि भाई करना क्या चाहते हो जिंदगी में। आज से 20-25 साल पहले जो होता था, जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। अगर तुम अभी डिसाइड नहीं करोगे कि तुमको क्या करना है, तो यू विल लूज अ लॉट इन लाइफ। अब उस प्रेशर में बच्चा थोड़ा मायूस हो गया। वो कहता है कि क्या मैं गलत हूं कि मैं किसी भी चीज में मेरा हुनर मुझे समझ में नहीं आया आज तक, मैं क्लियर नहीं हूं, तो मैं क्या करूं। तो मैं उसकी तरफ देखता रहा। पहले तो मैंने सोचा मैं अपना एग्जांपल दूं कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं कि 20-25 साल पहले जो चलता था अब नहीं चलता, वो जिंदगी कॉम्प्लिकेट हो गई है। ऐसे बच्चे को कैसे गाइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेचारा मायूस हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है।
4: कॉन्स्टेंट कंपैरिजन बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रहा है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी एक जैसी जर्नी नहीं होती, सबको एक जैसी क्लैरिटी नहीं होती, विच इज ओके। द मेजर प्रॉब्लम इज द कंपैरिजन एंड द रिजेक्शन एंड द प्रेशर।
3: जी,
4: प्रॉब्लम क्लैरिटी ना होने की इतनी बड़ी नहीं है। हमें कई बार 10th में लगता है साइंस बहुत अच्छी लगती है, बाय द एंड ऑफ इट वी रियलाइज नो वी आर नॉट मेड फॉर इट, देन वी गेट इनटू कॉमर्स, एंड बाय द एंड ऑफ 12th वी रियलाइज वी आर नॉट मेड फॉर कॉमर्स, देन वी टेक आर्ट्स, बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन वी रियलाइज नो मे बी आई एम मेड फॉर सम। सो आई थिंक दैट इज ओके, यू नो, एवरीबॉडी हैज टू डिस्कवर देमसेल्व्स। कोई जल्दी कर लेता है, कोई कहता है मुझे तो बचपन से ही पता था मुझे एक्टर बनना है, मुझे बचपन से ही पता था मुझे डॉक्टर बनना है, बहुत क्लैरिटी होती है। और कोई तो करियर चूज करने के बाद भी जब वो करियर को एंजॉय नहीं कर रहा होता, समटाइम्स 25, समटाइम्स 29, देन आल्सो दे टेक अ शिफ्ट। आई फील इट इज ओके, इट इज ओके, वी ऑल हैव टू डिस्कवर आवर लाइव्स। व्हाट इज नॉट ओके इज दैट कांस्टेंट कंपैरिजन, ये कर लेता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, ये कर लेता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। वो जो प्रेशर है वो बच्चे का स्वामान खत्म कर देता है। राधा कॉन्वर्सेशन क्या होनी चाहिए, कोई बात नहीं, यू विल फिगर इट आउट, कोई बात नहीं, एंड देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आजकल करियर काउंसलिंग होती है, कई प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, कई प्रकार के एनालिसिस होते हैं जो बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो उनको हेल्प करने की जगह
3: और डिप्लीट कर रहे हैं,
4: और डिप्लीट कर रही है। तो पेरेंट्स और टीचर्स को इसमें केयरफुल होना चाहिए। देखो, वी आर टू सोल्स ऑन अ जर्नी। बच्चे दिख रहे हैं 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, पर वो दो अलग अलग आत्माएं हैं विद डिफरेंट पर्सनालिटीज। उनकी जर्नी सेम नहीं हो सकती, ट्विन्स की भी सेम नहीं होती है।
3: बिल्कुल,
4: ट्विन्स में भी एक को कंप्लीट क्लैरिटी होती है, दूसरे को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती है। एक्सेप्ट द चाइल्ड, हेल्प देम, कंपैरिजन इज ओनली गोइंग टू डीमोटिवेट देम।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
2: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
7: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है। कहते हैं कि नेगेटिव थॉट इतने आते हैं कि मन करता है कि मर जाऊं, लेकिन मेरी एक लड़की है, उसके लिए मैं जी रही हूं। आंखों के सामने सब कुछ बुरा दिखाई देता है। मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा? भगवान के प्रति भी बुरा दिख जाता है, बहुत बुरा लगता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, क्या करूं?
2: बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स होना ऐसे हो जाता है जैसे बुखार है। 100 भी होता है, 102 भी होता है, 104 भी होता है। जब 104 बुखार होता है तब आप घर में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। आप घर में ही करते रहे तो कोई कहता है अभी आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको एक हेल्प सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
2: ऐसे अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप घर में नहीं बैठे रहे, आप ये नहीं सोचे सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करें, ये फिर बढ़ जाता है। तो इसमें दो चीजों का आप सपोर्ट ले सकते हैं। पहला मेडिकेशन, थेरेपी है। जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि कई बार थॉट आता है मर जाऊं, ये एक्सट्रीम का साइन होता है। आपको जब जीने की आश खत्म हो जाती है और आप ही जस्ट होल्डिंग ऑन टू दैट थ्रेड कि मेरी बेटी है, विच इज अ गुड थिंग, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम केस है। तो इसमें मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों का सपोर्ट लें।
1: बहुत बढ़िया।
2: मेडिकेशन भी शुरू कर सकते हैं और मेडिटेशन, देखो मेडिकेशन जो है ये भी हर एक को समझने जरूरी है, कोई दवाई मन तक नहीं पहुंच सकती है।
1: सही बात है,
2: है ही नहीं। आप वो मन ऐसी चीज, फिजिकल चीज तो है नहीं, कोई दवाई मन को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन मन जब बहुत नेगेटिव सोचता है तो उससे बॉडी के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसको सपोर्ट करने में वो मेडिसिन जरूर हेल्प करती है। आप सिर्फ मेडिसिन लेंगे वो सपोर्ट सिस्टम है। मन को अगर आपको शक्तिशाली बनाना है, व्यर्थ को समर्थ करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, उसके लिए तो आपको स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा।
1: तो मेडिटेशन वो चीज है जो आपके मन के हर कण कण में घुस जाती है, इसका जरूर आप फायदा उठाएं। तो मेडिटेशन एंड मेडिकेशन इज द वे टू गो फॉर यू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
2: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Hislip.

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स का इमोशनली थोड़ा डिटैच रहना क्यों जरूरी है, आइए जानें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: अक्सर क्या होता है, बड़े जो होते हैं ना, अगर उनके आसपास कोई ऐसा होता वो कहते कोई बात नहीं, यू फिगर इट आउट, लेकिन खुद ही के बच्चों को वो ये नहीं कह पाते। वो हमेशा, मेरा फेवरेट कोट है कि आई गिव रिमार्केबल एडवाइस बट आई सेल्डम टेक इट।
5: नो, द रीजन इज बिकॉज आप अपने पड़ोसी के बच्चे को भी बहुत अच्छे एडवाइस दे देते हैं, अपने को नहीं देते,
4: खुद को नहीं।
5: अटैच है ना, उनके सुख में मेरा सुख है, उनके दुख में मेरा दुख है। वो सेटल नहीं है, वो खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम सेटल नहीं है, हम खुश नहीं है, तो हम चाहते हैं वो सेटल हो, वो खुश हो, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी है। आई हैव मेट काउंसलर्स जो सबको एडवाइस देते हैं पर वो अपने बच्चे को नहीं दे पाते
4: हाँ।
5: क्योंकि बाकी सब बच्चों के लिए वो डिटैच होकर के देखते हैं,
4: यहाँ पे अटैच हो जाते हैं।
5: ये बहुत सिंपल साउंड करेगा, लेकिन एक काउंसलर जब कह देता है ना सब ठीक हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो सो मोटिवेटिंग। और पेरेंट क्या कहता है, तुम्हारा क्या होगा, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, तुम बसोगे, सेटल होगे, नहीं होगे, दो लाइन ही तो है ना।
4: सही बात है।
5: लेकिन तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, यू विल डू वेल, इट्स ओके, यू विल सेटल डाउन, डोंट वरी, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इट वाज एन एक्सपीरियंस, भले तुमने ये किया, नाउ यू हैव रियलाइज दैट यू नो यू डोंट वांट टू डू दिस, नेवरदेलेस इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, कुछ सीखा ही। दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन मोटिवेट्स द पर्सन।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
2: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
3: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
2: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Type C cable के साथ phone तो charge कर लोगे, खुद को कैसे charge करोगे? मिर्ची Recharge Mornings, सुबह 6 से 8, only on Mirchi, it's hot.

0: Recharge Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, मिलन गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम पैसा, नौकरी और दुनियावी चीजों में इतने उलझ गए हैं कि असली जीवन जो शांति, करुणा, सही कर्म और परमात्मा से जुड़ने के लिए है, उससे दूर हो गए हैं। हम समझते हैं कि ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जरूरी है, लेकिन व्यस्त जीवन शैली में ये संभव नहीं हो पाता। कृपया बताएं कि इसका समाधान क्या है।
3: हमने धर्म और कर्म को अलग कर दिया है
2: जी,
3: वो अलग नहीं है। इसीलिए जो शब्द अभी यूज होता है, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी
2: जी,
3: क्योंकि वो चीज अलग है ही नहीं ना। हमें लगता है धर्म, हमने आधा घंटा पूजा पाठ करी, कोई सत्संग किया, वो धर्म है। फिर दिन भर में हम बहुत व्यस्त हैं, हमें कर्म करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। पर वो कर्म हम कई बार गलत तरीकों से भी कर रहे होते हैं।
2: अच्छा,
3: किसी का नुकसान भी कर दिया, किसी को डांट भी दिया, किसी के प्रति क्रिटिकल भी हो गए, निंदा भी करी, नीचे गिराया, बहुत कुछ हमने किया, तो वो हमारा जो कौन से खाते में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से
2: लॉस में जाएगा।
3: तो वो धर्म को कर्म में लेकर ही तो आना था। आज वो कर्म क्या है, इसलिए कर्म नहीं कहना चाहिए, कर्म योग कहना चाहिए। सो एनीथिंग व्हिच इज डन राइट, वो पुण्य के खाते में जाएगा। तो धर्म आपको क्या सिखा रहा है, आप दिन भर कर्म करो, लेकिन ऐसा कर्म करो जो सबका भला हो, आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, और आप धन के साथ साथ दुआएं भी कमाए। देखिये, धन बहुत जरूरी है, लेकिन किसके लिए, वस्तुओं के लिए। बिना धन के लिए तो आप कोई चीजें तो नहीं आ सकते, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब नोटबंदी हुई तो जो नोट बंद हो गए, अभी उसका आपको ट्रक भर के भी दे दे,
2: ये लीजिए,
3: क्या फायदा। 1,000 का नोट है, आप उसको ट्रक भर के भी दे दे, क्या फायदा है। क्योंकि उस मनी की जो वैल्यू है, इफ इट कैन हेल्प यू बाय अ कमोडिटी, वो वस्तु के लिए है। पर उसको वस्तु तक रखे ना,
2: सही बात,
3: उसको वस्तु तक रखे, आप सोचे कि फिर वो धन आपको खुशी भी दे देगा, रिश्ते भी दे देगा और हेल्थ भी दे देगा, वो नहीं हो सकता।
2: नहीं हो सकता,
3: वो आपको मटेरियल बेनिफिट दे सकता है, मटेरियल कंफर्ट दे सकता है। तो दोनों को साथ चलाएं, धर्म को कर्म में लेकर आएं, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, कर्म योग करें, तो फिर आपको वो जीवन के अंदर कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस होगी।
2: क्या बात है, मुझे तो कंटेंटमेंट, जब मैं इनका सवाल पढ़ ही रहा था आपके लिए, तो मेरी शायद फेवरेट कविता है, एक तरह से हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत प्यारी कविता है, कई बार कोट करता हूँ कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जीवन में जो बोला, सुना, माना, उसमें क्या भला बुरा। और उसके बाद जो प्यारी लाइनें हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी ही दे ले में, हर एक यहाँ पे अपनी भुलावे में भूला, हर एक लगा है यहाँ पे अपनी अपनी दे ले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ, क्या करूं यहाँ, जाऊं किस जगह, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी। ये बहुत खूबसूरत लाइन है, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का उहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं ये सोच सकूं, जो किया कहां माना उसमें क्या भला बुरा।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
2: Mirchi Mornings with Priscilla, only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Mirchi Mornings.
2: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
3: गुड मॉर्निंग माय मिर्ची देसीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और तुम्हारा मॉर्निंग का रजिस्टर लेकर आई हूँ. मार्क योरसेल्फ प्रेजेंट बिकॉज शुरू हो चुका है दुहान एंड द ओनली मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पे सुबह सुबह कॉफी से पहले मिलता है थोड़ा सा गर्मा गर्म गॉसिप, काफी सारा बॉलीवुड का तड़का, थोड़ा सा देसी नॉस्टैल्जिया एंड इनफ बकबक, वो भी काम वाली, दैट विल मेक योर कम्यूट फील लिटिल लेस कम्यूट टाइप एंड अ लॉट मोर फन टाइप. और आज का फंडा पता क्या है, लाइफ में ट्रैफिक, टैक्सेस, रिलेटिव्स, सबके सवाल मिलते रहेंगे, लेकिन तुम सबको इग्नोर करके शॉर्टकट मार मार के आगे बढ़ते जाना. एटलीस्ट तुम्हारे सफर में म्यूजिक तो मर्चीदार होगा. क्या बात है, क्या बात है. सो वेर एवर यू आर लिसनिंग टू मी फ्रॉम, वॉल्यूम का बढ़ाओ और मिर्ची का थोड़ा सा वाइब अपने ऊपर चढ़ाओ और सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला और मुझे तुम फॉलो भी कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244. राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड।

0: मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: आज की डेट के पास कौन सा सीक्रेट पड़ा हुआ है ये पता करने का टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर. दिस इज प्रिसिला विद यू. और अब हम पता करेंगे कि 1793 में जॉर्ज वॉशिंगटन लेड द कॉर्नरस्टोन ऑफ द यूएस कैपिटल. मतलब कि वॉशिंगटन ने लिटरली कहा था फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. फिर 1810 में चिली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन. वीवा ला इंडिपेंडेंस. 1850 में यूएस कांग्रेस पास्ड द फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट, अ डीपली अनजस्ट लॉ दैट रिक्वायर्ड एस्केप्ड एनस्लेव्ड पीपल to be returned to their enslavers. Hashtag shameful. 1851 में the first edition of the New York Daily Times, which became the New York Times later, hit the street. And fast forward to 1927, CBS went on air with 18 radio stations. And look at us now. Radio is still keeping you company. 1947 में the US Air Force became an independent branch. 1970 में music legend Jimi Hendrix died at just 27. And 2014 में स्कॉटलैंड वोटेड टू रिमेन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. सो बेसिकली आज की डेट में दुनिया ने बहुत कुछ किया था. और हम क्या करने वाले, अभी हम सुनने वाले मिर्ची दार बैंगर्स कमिंग अप राइट योर वे ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हूँ. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
11: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना. इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
14: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
18: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
17: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
18: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
17: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islip.
19: Free entry.
20: One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugal Bandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
21: Listener MI, back to back gana sunega.
22: Back to back gana sunega.
21: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगे कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली @ आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
8: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
9: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
10: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
12: यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द वेदर अपडेट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी सुबह सुबह एट अराउंड 8 AM वी आर अबाउट 72 डिग्रीज फारेनहाइट, व्हिच इज फीलिंग क्लोजर टू 74 डिग्रीज फारेनहाइट। नॉर्थ विंड्स अराउंड 6 माइल्स एन आवर है, सो एक छोटा सा लाइट जैकेट कैरी करना साथ में बनता है। By afternoon 1 PM it will be 82 degrees Fahrenheit, so थोड़ी सी गर्मी लग सकती है, and this is also the warmest point of the day. Basically अभी भी winter shopping करने की जरूरत नहीं है, and उसके बाद थोड़ा सा dip होने वाला है, around 4 to 6 PM temperature होगा 80 degrees Fahrenheit, और कोई chance of rain नहीं है क्योंकि overall temperature का range आज है 67 to 82 degrees Fahrenheit with less than 1 millimeter of rain in the last 24 hours. अगले 24 घंटों में 0 millimeters की रेन एक्सपेक्टेड है। तो बाहर अगर निकलोगे, कैरी योर वाटर बॉटल, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर सच क्लोथ्स जिसमें तुम लेयर के प्लेयर लगो, और साथ साथ में अपना SPF 50++++ लगाकर बाहर जाना बिल्कुल मत भूलना, और मिर्चीदार वाइब्स के लिए मिर्ची लगाए रखना है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। सो वेदर यू आर हेडिंग टू वर्क, स्कूल, और जस्ट प्रिटेंडिंग दैट 5 और मिनट बाद मैं उठने वाला हूँ या वाली हूँ, मुझे सुनते रहो। मेरा नाम है प्रिसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this is Mirchi पर Mirchi Hour का 3.
0: Mirchi Hour का 3.
1: सबसे पहले फ्लोरिडा सिटी काउंसिलमैन चैंडलर लैंग्विन टोल्ड इंडियन ओरिजिन कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति टू टेक योर करी एंड गो होम. कृष्णमूर्ति का रिस्पांस इस पर था, आई एम स्टेइंग सो इज द करी. अमेरिका इज माय होम एंड ऑनेस्टली दैट कम बैक केम विद साइड ऑफ राइस एंड रेजिस्टेंस. द कांग्रेसमैन ऑल्सो सेड नो वन गेट्स टू डिसाइड हु बिलोंग्स इन अमेरिका और वॉट दे हैव फॉर डिनर. Number two per Indian Ministry of External Affairs has changed passport rules for children under 15. An ordinary 36-page passport will now be valid for 5 years or until they turn 18, whichever comes first. And lastly, Gondhal, directed by Santosh Dawakar, has been selected as India's official entry for the 2027 Oscars in the Best International

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे। बहुत,
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन, आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब? नहीं,
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
1: अच्छा, कुकुर कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price. To ho jaiye taiyar ek aisi yaadgar sham ke liye jahan hoga sangeet, masti, nostalgia aur Usha Uthup ka wahi legendary electrifying andaaz. Is दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
11: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ, टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा, कॉल 9549188589।
12: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट, कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर, कॉल 7323666777।
13: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
16: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
17: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
16: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
17: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Free entry.
20: One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2 9033647244, दैट इज 9033।

0: have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: The mortgage industry has changed over the years, but our honest advice aaj bhi wahi hai.
2: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
1: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
2: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
14: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

छड़ी न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, all my birthday babies. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. और आज अगर 18 सितंबर को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, मेन कैरेक्टर एनर्जी तो डिस्प्ले कर ही रहे होगे. अब पता करने का टाइम है कि तुम्हारे साथ कौन से सेलिब्रिटीज अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं. सबसे पहले वी've got बॉलीवुड रॉयल्टी शबाना आजमी जी, who's won the national award 5 times. मतलब बर्थडे केक पर कैंडल कम, अवार्ड्स की कैंडल अगर लगेगी तो मजा ही आ जाएगा. एंड बैडमिंटन स्टार अश्विनी पोनप्पा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है ये. एंड इंटरनेशनल स्क्वाड में जेसन सूर के इस टेड लासो के कोच, जरा पिंकेट स्मिथ एंड जेम्स मार्स्टन, और सोनिक फेम आयशा टाइलर जिसने आर्चर की वॉइस की है. और थोड़ा सा ना ओल्ड स्कूल ग्लैम भी आज मेरे साथ में है. ग्रेटा गार्बो शेयर्स द डेट विथ यू प्लस एक्टर एंड मॉडल पैट्रिक श्वार्ज़नेगर. एंड पास आइकॉन्स में आर्टिस्ट गगनेन्द्र नाथ टैगोर एंड फ्रीडम फाइटर मदन लाल ढींगरा भी सितंबर 18 को ही बॉर्न हुए थे. तो आज अगर तुम्हारा बर्थडे है तो बेबी इट्स योर डे. केक खाओ, कॉम्प्लीमेंट्स लो, ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स और ले लो, और कैलोरीज को बोलो यार कल मिलते हैं, क्योंकि आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं होती है. तुम अपने बर्थडे शाउटआउट्स मुझे भेज सकते हो दो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
9: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
10: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
9: Wait, they can see us on Sunday?
10: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: Beta. शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन

0: ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो जी, टाइम आ चुका है पता करने का कि गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,325, $4,325 पर ट्रे आउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। कल से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड पर है और एक डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट गोल्ड पार्स के लिए। 1 ounce, 10 ounce, 100 ग्राम

0: किलो बार पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर. वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की.
1: हाँ
2: सर वो भी हो नहीं पाई है. वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया क्या मजाक ही क्या है ये.
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर. वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है. मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: मैं गुस्से ना करूं. नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें.
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें. हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप में. बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना.
8: अरे मेरा बच्चा है तू. चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार.
9: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है.
10: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक. बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com.
11: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए. गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
12: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी.
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
14: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
15: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
14: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
15: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
16: Inefficient.
17: Very complex.
16: Clumsy or
17: confusion ही confusion.
16: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab, mirchi kha.
2: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hola, it's time for Rashi's Zone Part 1 on Mirchi Mornings with me, Priscilla.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is Yanimesh Rashi. Purani identity ya old insecurities knock kar sakti hai. Shut down mat ho na, baat karo, communicate karo, aaj silence se zyada clarity kaam karegi. Lucky color for you is coral, lucky number is 14. Taurus yani ki Rishabh Rashi, tumhara planning mode on ho chuka hai. Bas ek chhotu sa road block aa sakta hai. Frustrate mat ho na, plan B bhi plan hi hota hai, insult nahi. Lucky color is olive, lucky number is 27. Gemini yani Mithun Rashi, creative ideas full speed par hai. Lekin social situations mein thoda sa sensitivity radar on rakho. Har thought ko microphone ki zarurat nahi hoti, okay? Lucky color is lavender, lucky number is 6. Cancer yani Kark Rashi, authority figure aaj tumhari speed breaker bankar aa sakte hain. Boss, parent, manager, koi bhi ho sakta hai. Reaction dene se pehle, deep breath lo and then diplomacy bahar nikalo. Lucky color is pearl white, lucky number is 18. Leo yani ke Sinha Rashi, purani beliefs ya opinions wapas samne aa sakte. Is baar unhe defend karne ke bajaye क्वेश्चन करो. ग्रोथ का मतलब कभी कभी अपने ओल्ड ओपिनियंस को अपग्रेड करना भी होता है. लकी कलर इज मैरी गोल्ड, लकी नंबर इज 31. वर्गो यानी कन्या राशि, ट्रस्ट इश्यूज या गार्डेड फीलिंग्स सरफेस हो सकती है. हर चीज का फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं होता है. पहले फैक्ट्स को देखो, चेक करो, फिर कंक्लूजन निकालो. लकी कलर फॉर यू इज स्टील ग्रे, लकी नंबर इज 8. एंड दैट वाज योर फर्स्ट 6 राशियों का राशि जोन. अगली 6 राशियों को लेकर मिर्ची मॉर्निंग्स पर आएगी प्रिसिला थोड़ी सी देर में. मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट दीज मिर्चीदार बैंगर्स. और मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033 647 244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर। जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
9: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
10: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
9: Shaadi shop का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
11: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 13 सप्टेम्बर

0: રવિવાર
1: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન. વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર વિસ્કાટવે ઓન 732-357-8200. જય ગુરુદેવ.
2: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
2: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में Mirchi Mornings पर. Welcome back to Rashi Zone Part 2.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आइडियाज तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन एक अनरिजॉल्व रिलेशनशिप मैटर बार बार पॉपअप हो सकता है. क्लोजर चाहिए, कॉन्वर्सेशन करो, माइंड में इमेजिनरी कोर्ट रूम मत चलाओ. लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 22. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज लॉजिक से ज्यादा इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना यूजफुल हो सकता है. थोड़ा सा क्वाइट टाइम लो, हर आंसर गूगल पे नहीं मिलता है, कभी कभी गट फीलिंग जो है ना वो भी सर्च इंजन बन जाती है. लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, ग्रुप सेटिंग में थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ सकता है और तुम अपनी वॉइस होल्ड बैक कर सकते हो, लेकिन डोंट, अपना ओपिनियन जो है उसको अटेंडेंस शीट पर साइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पीक अप. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 35. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज लीडरशिप लेने से पहले खुद को ग्राउंड करो. सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलोगे तो अपनी चाय ठंडी हो जाएगी. फर्स्ट काम योर सेल्फ डाउन, देन कमांड. लकी कलर इज चारकोल, लकी नंबर इज 4. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि,

past lessons वापस आ सकते हैं, but this time you get a chance to handle the same theme differently. Same chapter, new character development. Lucky color is electric blue. Lucky number is 17. And last but not the least, Pisces यानी कि मीन राशि, आज self worth और emotional boundaries पर थोड़ा सा focus करो. किसी और की अप्रूवल को अपनी वैल्यू का प्राइस टैग मत बनाओ. यू आर नॉट अ क्लियरेंस सेल. ओके, लकी कलर इज ग्रीन. लकी नंबर इज 29. एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट टू विथ मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे कनेक्ट करना है तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. अब आने वाला है मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। है ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने।

0: और हाँ भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे? सही है।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
7: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स, दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
6: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
7: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब मेरा जो है रैप अप का टाइम शुरू हो चुका है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बताना तो बनता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टार मिली बॉबी ब्राउन, यस 11, एंड हर हस्बैंड ड्रेक बॉन जोवी हैव वेलकम्ड देयर सेकंड चाइल्ड थ्रू अडॉप्शन। द कपल हैड अडॉप्टेड देयर फर्स्ट बेबी गर्ल ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, एंड नाउ फैमिली में एक और लिटिल मेंबर की एंट्री हो चुकी है। ओह क्यूट। वैसे तो इंटरनेट वॉज ऑलरेडी डूइंग इट्स डिटेक्टिव गिरी। मिली हैड शेयर्ड पोस्ट फ्रॉम देयर इटली ट्रिप वेयर ड्रेक वॉज सीन विद अ बेबी कैरियर, एंड फैंस वर लाइक हॉकिंस में कुछ तो हो रहा है। द कपल हैज नाउ शेयर्ड अ स्वीट ग्लिम्स ऑफ देयर बेबी boy, just his tiny hand holding dad Jake's finger. And caption tha simply, hi little guy. No name or face reveal yet because they are keeping their kids' lives private, which I absolutely understand. And honestly, from fighting monsters in Stranger Things to mastering diapers, 11 kafi badi ho gayi hai na? और अब टाइम के हिसाब से मुझे भी जाना चाहिए, वरना मैं यहीं पर और बड़ी हो जाऊंगी। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टाटा बाय बाय का टाइम आ चुका है। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। वीकेंड एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, एंड डू कनेक्ट विथ मी। अभी के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: भाई डेब्यू हो तो ऐसी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना वो शॉर्ट फिल्म कैटेगरीज में आती है, और ये फिल्म सिलेक्ट हुई है फॉर 10 फिल्म फेस्टिवल्स अक्रॉस 4 डिफरेंट कंट्रीज, और इसी फिल्म के साथ एक्टर सयानी गुप्ता ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। इसका नाम है आसमानी, और ये शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रही है। 2 महीने के टाइम पीरियड में 10 फिल्म फेस्टिवल्स टच करेगी, विच इज हैपनिंग अक्रॉस US, कनाडा, जापान एंड इंडिया। अगर कहानी के बैकड्रॉप की बात करें तो एक हार्ट वार्मिंग बॉन्ड दिखाया गया है बिटवीन अ स्पिरिटेड ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंड डॉटर, और इन दोनों की कहानी चल रही है एक पाउडर ब्लू कलर की कार में, विच डेफिनेटली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर जर्नी। इस फिल्म के साथ ही एक्टर सयानी गुप्ता ने एज अ डायरेक्टर लव लॉस एंड फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर किया है थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंड डॉटर। इनफैक्ट उन्होंने तो एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि भाई दिस इज इंस्पायर्ड समवेयर डाउन द लाइन फ्रॉम हर रिलेशनशिप विद हर ग्रैंड मदर। एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि ये कितना होलसम होगा देखने में। अगर आपको फिल्म का ओवरव्यू चाहिए तो ट्रेलर अवेलेबल है, डू गो चेक इट आउट। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अगर किसी भी तरीके से मौका मिले ऐसी फिल्मों को देखने का, देन इट्स हाई टाइम दैट वी एज ऑडियंस सपोर्ट सच क्राफ्ट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए।

0: मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका वो रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लग
0: रहा है? नहीं मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
0: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। आप अपने दिमाग के घोड़ों को किधर किधर दौड़ा रहे हो यार, जरा लगाम लगाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाकर अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। इनफैक्ट कभी कभी कुछ लोगों को कॉल करने पे वो तो फोन भी नहीं उठाते यार, आई गेस नंबर थोड़ा वियर्ड सा होता है, इसलिए आपको लगता है कि ये तो बस वो वाला कॉल होगा जिसको इग्नोर करना है। बट एनीवे, आज मैंने कॉल लगाया है नितिन जी को, एंड आई गॉट टू नो कि वो हैदराबाद हाल फिलहाल शिफ्ट हुए हैं बैंगलोर से, बट ओरिजिनली ये हमारे यहाँ से आते हैं। बोले तो बिहार पटना का कनेक्शन है भैया। तो नितिन जी, मिर्ची फिल्म ची बनने के लिए तैयार हैं आप?
3: यस श्योर।
0: तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की फिल्म जिसमें 8 साल के बच्चे को डिसलेक्सिया होता है?
3: तारे जमीन पर।
0: हाँ जी, तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी के फेवरेट टीचर कौन है?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान की फिल्म जिसमें वो लड़की को खंडाला बुलाते हैं?
3: गुलाम।
0: यस, गुलाम में हीरोइन कौन है?
3: रानी मुखर्जी।
0: रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें वो चोर बनती हैं?
3: बंटी एंड बबली।
0: हाँ जी, बंटी और बबली में पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: पुलिस ऑफिसर अमिताभ बच्चन।
0: यस, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो सड़ू प्रिंसिपल बने हैं?
3: मोहब्बतें।
0: मोहब्बतें में किस हीरो को एक विधवा से प्यार हो जाता है?
3: जिमी शेरगिल।
0: हाँ जी, जिमी शेरगिल की फिल्म जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड कंगना रनौत थी? सही जा रहे हैं आप। बस काश कि मैं गाना गेस करने पे आपको ये नंबर दे देती, बट कोई नहीं, आपने इस गेम को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाया है, इसलिए आप बने हैं हमारे आज के पहले
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो रेडियो के उस पार जो भी सुन रहा है फिलहाल, अगर आप इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं, देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर भेजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: फ्री एंट्री,
9: वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन। इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स, देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
10: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare. 79 Middlesex Avenue is
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: किसी के दिल से नहीं, बट मैं मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है। फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमने शुरू किया था नितिन जी से बड़ी गॉट स्टार्टेड पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ हैं गीतांजलि। तो क्या तैयार है मैम?
3: जी बिल्कुल।
0: ओके, तो वो जहाँ जिस क्वेश्चन पे अटके थे, वो सवाल था जिमी शेरगिल की फिल्म जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड कंगना रनौत थी।
3: वो तनु वेड्स मनु।
0: क्या बात है, तनु वेड्स मनु में तनु से लव एट फर्स्ट साइट किसको होता है?
3: ये आर माधवन को।
0: जी, आर माधवन की फिल्म जिसमें वो हौसला, ईंधन और बदला सिखाते हैं।
3: धुरंधर द रिवेंज।
0: धुरंधर द रिवेंज में मेजर इकबाल कौन है?
3: अर्जुन रामपाल।
0: यस, अर्जुन रामपाल की फिल्म जिसमें वो शांति प्रिया को झूमर के नीचे मारते हैं।
3: ओम शांति ओम।
0: क्या बात, ओम शांति ओम में ओम के दोस्त कौन है?
3: श्रेयस तलपड़े।
0: वाह वाह, श्रेयस तलपड़े की फिल्म जिसमें वो स्टैमर करते हैं।
3: गोलमाल थ्री।
0: गोलमाल थ्री में माधव कौन है?
3: अरशद वारसी।
0: यस, अरशद वारसी किस फिल्म में बड़ा वाला डब्ल्यू ढूंढते हैं?
3: बड़ा वाला डब्ल्यू शायद उसमें धमाल में।
0: हाँ जी बिल्कुल सही, शायद नहीं बिल्कुल सही, धमाल में करप्ट पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: संजय दत्त।
0: यस, संजय दत्त की फिल्म जिसमें वो अपनी माँ को 50 तोले की गोल्ड चेन फ्लॉन्ट करते हैं।
3: वास्तव।
0: क्या बात है, और आप भी वास्तव में फिल्मची हैं एकदम बड़ी वाली।
3: इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया था।
0: बहुत मजा आया आपके साथ ये गेम खेल के।
3: थैंक यू सो मच मैम।
0: ऑनेस्टली थैंक्स। तो आप लोगों को बोलना चाहिए कि आप फुर्सत निकाल के मेरे डीएम्स में जाके अपना नंबर भेज देते हो यार। तो चलिए इसी बात पे डिक्लेयर करते हैं गीतांजलि जी को आज के हमारे शो की दूसरी
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी थोड़ा फोमो में है, देन वरी नॉट, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर भेजिए एंड आई विल कॉल यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Healthcare में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर AIIMS College of Health Sciences हमेशा आपके साथ है।
4: Choose career focused certificate and degree programs in MRI, ultrasound, cardiovascular, neurodiagnostic, anesthesia, surgical technology or many more with hands-on clinical experience.
3: AIIMS Education is now welcoming international students and offering I-20 to eligible international students pursuing an F1 student visa. Visit aimseducation.edu. Your healthcare future starts with AIIMS.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: यार ये दूसरी कैटेगरी वालों को क्या पढ़े लिखे गवार बोल सकते हैं?
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज डिस्कस कर रही हूँ पब्लिक स्पेस में अपना फोन यूज करने वाले लोगों को, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अगर किसी पब्लिक स्पेस में है तो सेंसिबली काम करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन इनका होता है कि भाई हेडफोन्स इनके हैंडी रहते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, ओहो, बहुत ही गलत कीड़े ने बहुत ही गलत जगह काट रखा है इनको, क्योंकि ये पब्लिक स्पेस को भी ना अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मान के चलते हैं। ये लिफ्ट में हो, किसी ऑफिस स्पेस में हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आजू बाजू कौन है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है। इनको अगर वॉल्यूम का लेवल टॉप नॉच रख के ही कोई वीडियो देखनी है, फॉर दैट मैटर कॉल पे बात करना है, तो ये करेंगे। और ये वही लोग हैं जो थिएटर में अपना फोन रिंगर पे भी रखते हैं, और अगर कॉल आए तो उसको अटेंड भी करते हैं, वो भी थिएटर के अंदर ही। बेटा कसम से बता रही हूँ, किसी दिन गलत हत्थे चढ़े ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी तो बच्चे को गुब्बारा काफी और समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: She is not your regular heroine.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पिटी उंडन हूँ आप और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें अलग अलग कैरेक्टराइजेशंस देखने को मिले हैं ऑफ एक्ट्रेसेस, राइट. लेकिन आज मैं उन हीरोइंस की बात करने वाली हूँ जिनके हाथ में फूल नहीं FIR होते हैं. सो बॉलीवुड में पुलिस यूनिफॉर्म ट्रेडिशनली हीरोज की टेरिटरी रही है, राइट. वो सिंघम हो, दबंग हो, सिम्बा हो, द लिस्ट इज रियली लॉन्ग. लेकिन जब हमारी फीमेल एक्टर्स ने खाकी पहनी तो सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी, अपने साथ एक अलग काइंड ऑफ अथॉरिटी, अग्रेशन और वल्नरेबिलिटी भी लेकर आई. तो आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मिली हमें कुछ अल्टीमेट लेवल वुमेन कॉप्स. लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी का किरदार फ्रॉम द मूवी मर्दानी. नंबर दो पे बात करेंगे DCP वर्तिका चतुर्वेदी के बारे में, प्लेड बाय शेफाली शाह इन दिल्ली क्राइम. नंबर तीन पे IG मीरा देशमुख प्लेड बाय तबू इन दृश्यम. नंबर चार पे SP आभा माथुर प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा इन जय गंगा जल. और नंबर पांच पे कस्तूरी डोगरा प्लेड बाय रवीना टंडन इन अरण्यक. तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं उस कॉप की जिसके नाम में ही एटीट्यूड है, शिवानी शिवाजी रॉय. रानी मुखर्जी आज शिवानी क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं जो मर्दानी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट के खिलाफ खड़ी होती हैं. हमारी इस हीरोइन को किसी हीरो के बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करती है, खुद क्रिमिनल्स को चेज करती है और जरूरत पड़े तो खुद एक्शन भी लेती है. इन शॉर्ट शिवानी शिवाजी रॉय स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ करेज, जस्टिस एंड अ वुमन्स रिफ्यूजल टू बैक डाउन. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और अब से कुछ ही देर में अपनी इस लिस्ट को वापस लेकर आऊंगी. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieta la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
2: क्या कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब? नहीं,
2: कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
8: 13 सप्टेम्बर रविवार
7: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन।

0: વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર વિસ્કાટવે ઓન 732-357-8200. જય ગુરુદેવ.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: ओह नो,
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: Free entry.
5: One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
8: हाँ, अभी भी बहुत कमी है, बट वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट.
9: श्रुति,
10: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
8: बस इस वाले काम की स्पीड ना थोड़ी बढ़ जानी चाहिए. आप देखो, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े कि भाई ये लड़की क्या ही बोल रही है. बेसिकली आज ना मैं अपने पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अल्टीमेट फीमेल कॉप्स की डिस्कशन कर रही हूँ. और जब ये लिस्ट तैयार कर रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ दैट वी जस्ट हैव अ हैंडफुल ऑफ सच कैरेक्टर्स यार. तो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट शिवानी शिवाजी रॉय, प्लेड बाय रानी मुखर्जी इन मर्दानी सीरीज. अब नंबर दो पे बात करते हैं डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के बारे में, प्लेड बाय शेफाली शाह इन द सीरीज दिल्ली क्राइम. तो अगर शिवानी शिवाजी रॉय खाकी की फायर है ना, तो वर्तिका चतुर्वेदी खाकी का कंपोजर है. दिल्ली क्राइम का बैकड्रॉप एक हॉरिफाइंग रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड इन्वेस्टिगेशन है और शेफाली शाह की डीसीपी वर्तिका उस इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में खड़ी है. वो हर वक्त गुस्से में चिल्लाने वाली बी टाउन कॉप नहीं है. वो सुनती है, ऑब्जर्व करती है, कैलकुलेट करती है और फिर डिसीजन लेती है. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल लेयर इज यूनिफॉर्म के पीछे का इंसान. केस का प्रेशर है, विक्टिम्स का ट्रॉमा है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर घर लौटकर एक नॉर्मल वाइफ और माँ होने की कोशिश भी. इन शॉर्ट, शेफाली शाह ने वर्तिका को सुपर हीरो बनाने के बजाय ह्यूमन रखा. नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट आईजी मीरा देशमुख, प्लेड बाय तबू इन दृश्यम. सो ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके सामने एक ऑर्डिनरी फैमिली ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग कर डाली. दृश्यम में अजय देवगन एज विजय सलगांवकर अपने फैमिली को बचाने के लिए एक इलैबोरेट स्टोरी तो क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी उस स्टोरी के सामने खड़ी है हमारी आईजी मीरा देशमुख, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जिसके लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनका पर्सनल क्वेस्ट बन जाता है. वेल, मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसे ही फीमेल कॉप्स की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड. मैं हूं आपके साथ श्रुति. इट्स हॉट.

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
10: I am not going to bed with you ever again.
9: But why? What did I do?
10: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
9: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
10: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
9: Yes, come soon. Honey!
10: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
11: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
12: Yeah. Meety-mitchy, brighten up your day, we will find a way. On Meety-mitchy,
13: इन्होंने खाकी को सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, एक पर्सनालिटी बना दी।
14: श्रुति, श्रुति, श्रुति,
15: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
13: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हुआ आप और मैं बात कर रही हूँ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अल्टीमेट लेवल फीमेल कॉप्स की, जो कभी सिस्टम से लड़ती दिखी, कभी क्रिमिनल से, कभी एक इम्पॉसिबल केस से और कभी कभी खुद के इमोशन से। तो लिस्ट में सबसे पहले हमने बात की शिवानी शिवाजी रॉय प्लेड बाय रानी मुखर्जी के बारे में। नंबर दो पे वी टॉक्ड अबाउट डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी प्लेड बाय शिफाली शाह। नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड अबाउट आईजी मीरा देशमुख प्लेड बाय तबू। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट एसपी आभा माथुर प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा इन द मूवी जय गंगा जल, जहां कहानी एक इंडिविजुअल क्रिमिनल से ज्यादा पूरे सिस्टम के खिलाफ है। प्रकाश झा की जय गंगा जल एक ऐसे पुलिस सिस्टम को एक्सप्लोर करती है जहां पावर, पॉलिटिक्स, करप्शन और क्राइम एक दूसरे से जुड़े हैं। और उसी बीच आभा माथुर एक ऐसी ऑफिसर हैं जो एक करप्ट सेटअप में एंटर करती हैं और डिसाइड करती हैं कि सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं, चैलेंज करना है। मूविंग ऑन नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट कस्तूरी डोगरा प्लेड बाय रवीना टंडन इन द क्राइम थ्रिलर अरण्यक। सो ये फिल्म एक एटमॉस्फेरिक क्राइम थ्रिलर है जहां एक हिल टाउन में एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस और एक सपोजिटली मिथिकल क्रीचर की कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक स्ट्रेंज डायरेक्शन में ले जाती है। फिल्म में कस्तूरी का किरदार इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो पिक्चर परफेक्ट कॉप नहीं है। शी इज मेसी, कॉम्प्लिकेटेड एंड डेफिनेटली ह्यूमन। एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ फैमिली और पर्सनल लाइफ। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर है, दूसरी तरफ अपने ही इमोशनल बैगेज का वेट। और शायद इसी वजह से कस्तूरी बाकी फीमेल कॉप से अलग लगती है। वेल, मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई ऐसी ही फीमेल कॉप का नाम ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। बट ये बात तो सच है यार दैट इट्स हाई टाइम कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ऐसे मीटी फीमेल कॉप्स वाले रोल्स हमें और देखने को मिले। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Yeah, meethi mirchi, brighten up your day, we will find a way. On meethi mirchi, aha.
12: Fingers crossed कि इस ट्रेंड को अच्छे से फॉलो किया जाए।
13: श्रुति, श्रुति,
14: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
12: नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं वो इंस्टाग्राम पे चल रहे 80s ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ, नहीं यार, मैं तो बात कर रही हूँ बुक एडाप्टेशन के ट्रेंड की। बाबू मोशाए, सो बेसिकली जिस हिसाब से हॉलीवुड की फिल्मों को इंडिया में भी प्यार मिल रहा है, तो मैंने सोचा एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म की बात करूं जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, क्योंकि जिस नॉवल से ये मूवी इंस्पायर्ड है मैं करंटली वो नॉवल पढ़ रही हूं और उसका नाम है द लव हाइपोथेसिस बाय एली हेजलवुड, जिसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर क्लेयर स्कैनलन ने। इनके कुछ काम के नाम आपको याद दिलाना चाहती हूँ। फिल्म सेट इट अप याद होगा आपको, साल 2018 में आई थी। इनफैक्ट आपको अगर अक्लेम्ड कॉमेडी सीरीज लाइक द ऑफिस, ब्रुकलिन 99 या द गुड प्लेस पसंद है तो बाबू मोशाय डायरेक्टर क्लेयर ने इन सीरीज के एपिसोड्स भी डायरेक्ट किए हैं। सो अगर इस फिल्म के प्रमाइस की बात करें ना, तो यहाँ फेक डेटिंग अरेंजमेंट की जाती है बिटवीन अ PhD कैंडिडेट एंड एन इंटिमिडेटिंग प्रोफेसर, जो इवेंचुअली रियल केमिस्ट्री में तब्दील कर जाती है। और अगर ये कहानी का कॉन्टेक्स्ट सुन के आपके दिमाग में लड्डू फूट रहे हैं, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, ये मूवी प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम करना शुरू होगी फ्रॉम द 23rd of September। तो उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। बाकी ऐसे ही कोई अडेप्टेड मूवी अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
15: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर. 1 2

इसी गाने के डांस के बाद डायरेक्टर वी आर इशारा साहब को जावेद जाफरी बेहद पसंद आ गए थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ किशोर दा का गाया हुआ ये गाना बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल। वेल ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म मेरी जंग। अब हुआ ये कि जावेद जाफरी को इस गाने में थोड़ा सा डांस करना था, लेकिन जावेद जाफरी साहब का वो थोड़ा सा डांस एब्सोल्युटली एकदम यू नो स्टैंड आउट कर रहा था। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे बी आर इशरा साहब, उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने जावेद जाफरी से कहा कि मैं तुम्हें एक गाना दूंगा सोलो डांस के लिए विच विल बी इन माय नेक्स्ट फिल्म। वो नेक्स्ट फिल्म थी वो फिर आएगी और उसमें जावेद साहब को एक गाना मिला पहला पहला प्यार जानम तेरे लिए। एंड इफ यू गो एंड वॉच द सॉन्ग यू विल लव जावेद जाफरी डांस, मतलब वो हो दिल खोल के जो वो नाचे है ना मजा आ जाएगा आपको। और ये उस टाइम की बात है जब एक्टर्स ज्यादा डांस नहीं करते थे, बस हीरोइंस का हाथ लेकर के थोड़ा बहुत घूम लेते थे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, मैं हूँ श्रेया, यानी उस जमाने के गाने उस जमाने की बातें अब शुरू हो जाएंगी। सो ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, अपनी सारी टेंशन को ना एकदम उड़नछू कर दो, क्योंकि इसीलिए मैं आती हूँ यहाँ पर आपके लिए आपके फेवरेट रेट्रो सॉन्ग्स लेकर के। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिल गया
5: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
5: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम। मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल
5: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
5: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
3: मेरी
4: बात है। अच्छा चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
3: मैंने सोचा यार रिक्शा
4: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
7: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
12: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
13: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
14: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: Free entry.
16: One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna

0: Jewelers, ladies' first choice.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा. और

अच्छा, जब भी हम लोग ये गाना सुनते हैं तो एक्चुअली में बच्चन साहब की इमेज सामने आती है ना, जैसे वो गमछा अपने सर पे बांध करके जब ये गाना गाते, खाई के पान बनारस वाला, पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। एंड इफ आई टेल यू टू इमेजिन कि इस गाने में सोचो अगर सोफेस्टिकेटेड से देव आनंद साहब होते तो क्या होता। शायद देव साहब भी ये बात बहुत अच्छे से जान गए थे। सो, ये गाना एक्चुअली में देव साहब की फिल्म बनारसी बाबू के लिए बना था कि खाई के पान बनारस वाला, लेकिन देव साहब को अपनी इमेज के एकदम ऑपोजिट ये गाना लगा। उन्होंने कहा, भाई मैं पान वान खाता नहीं हूँ और मैं इस गाने पे ये डांस वांस मुझसे होगा नहीं, वो भी पान चबाते हुए। भाई वो हमेशा से यू नो प्रिम एंड

प्रॉपर सोफेस्टिकेटेड, थोड़ा सा मफलर अफलर डाल करके वैसे डांस स्टेप्स किया करते थे. सो देन यही गाना फिर गया डॉन फिल्म में, और बच्चन साहब ने गमछा सर पे बांध करके, कभी कमर में बांध करके क्या परफॉर्मेंस दी दैट इट बिकेम मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस. पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गानों की बातें मेरे साथ यानी इस जमाने की श्रेया के साथ चलती रहेंगी बैक टू बैक. आपको क्या करना है, आपको बस सिट बैक एंड रिलैक्स, इसके अलावा कुछ नहीं. और हाँ, एक चीज और करनी है, इफ यू वांट टू स्पीक विद मी, अगर कुछ भी बोलना है या फिर मुझसे कोई कंप्लेन है तो वो भी बोल सकते हो एकदम धड़ल्ले से. आरजे श्रेया विद लव, इस नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ, डीएम कर देना.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
2: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
1: पक्का फाइनल आंसर?
2: फाइनल आंसर। जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
7: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
8: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
9: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
10: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
12: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।

0: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: इंडस्ट्री में जब उन्होंने कदम रखा ना, तब भी उनकी आवाज़ के बारे में लोग बहुत बातें करते थे। फिर उसके बाद बच्चन साहब ने बड़े सारे गाने गाए हैं एंड ऑल ऑफ अस नो दैट, लेकिन कौन से गाने की उनके इस टैलेंट की शुरुआत हुई थी, वो गाना मेरे पास है आज। वेल, ये जो गाना है ये राजेश रोशन साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये गाना आप ही गाओगे। बच्चन साहब ने तब तक इससे पहले कोई भी गाना नहीं गाया था एंड ही सेड कि नहीं, मैं कैसे गा सकता हूँ, मेरी आवाज़ के बारे में लोग वैसे ही बात करते हैं कि बहुत एकदम बैरिटोन है और ये है वो है। लेकिन राजेश रोशन ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि ये जो गाना है ये आप ही की आवाज़ में जाना चाहिए। तो कोई भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं लिया गया था एंड दिस वॉज द स्टार जब बच्चन साहब ने गाने शुरू किए थे अपनी फिल्मों के लिए। Well, with song I'm talking about,
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं।
0: मूवी का नाम है मिस्टर नटवरलाल। आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स हैं और राजेश रोशन का म्यूजिक है, बच्चन साहब की आवाज। Only on पुरानी जीन्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट। चलो मिलके इनसे एक कहानी सुनते हैं।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

रामपुर का लक्ष्मण इस फिल्म का गाना किशोरदा और लता जी की आवाज में ओनली ऑन पुरानी जीन्स, और ये है मेरी यानी आपकी प्यारी श्रेया की आवाज। अच्छा सुनो ना, अगला गाना बहुत ही खास है। सो अमिताभ बच्चन, ये स्टोरी सबको पता है, ऑल द रेट्रो फैंस डेफिनेटली नो कि बच्चन साहब ऑल इंडिया रेडियो गए थे ऑडिशन देने और उनकी आवाज के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था।

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ, बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भाग रे।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
5: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
4: Wait, they can see us on Sunday?
5: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Listener MA, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जी।

मूवी का नाम मुकद्दर का सिकंदर, बच्चन साहब की फिल्म। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग रेट्रो लवर्स हैं जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। तो ना एक सीन आता है जिसमें बच्चन साहब स्टेज पे जाकर के एक बहुत ही पेनफुल स्पीच देते हैं। अब हुआ ये कि कादर खान साहब इस फिल्म के डायलॉग्स लिख रहे थे, और कादर खान ने ये जो स्पीच थी ये 16 पन्ने की स्पीच

सकती। तो जब बच्चन साहब के पास ये डायलॉग्स गए, ये स्पीच गई 16 पेजेस की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इतनी लंबी स्पीच कैसे बोल सकता हूँ, मतलब देयर इज नो वे कि मैं इतनी लंबी स्पीच याद रख पाऊंगा और उसे डिलीवर कर पाऊंगा। जब ये डायलॉग्स गए प्रकाश मेहरा, हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, उनके पास, ही ऑल्सो सेड कि भाई 16 पन्नों की स्पीच कोई कैसे याद कर सकता है। तो बच्चन साहब ने तो आउटराइटली रिफ्यूज कर दिया कि इसको ना एकदम कट करके शॉर्ट करो, तब जा करके मैं सीन कर पाऊंगा। अब मीन वाइल हुआ ये, क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने काम में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और हर एक के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट थे एंड ही यूज टू फील कि जो इंसान जो कर रहा है वो अपने काम में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने घर जाने से पहले अपनी गाड़ी भेजी और उस गाड़ी से कादर खान जी को बुलाया। जब कादर खान आ गए एंड व्हेन बोथ ऑफ देम मेट, तो ही सेड कि मैं इतनी लंबी स्पीच तो बोल ही नहीं सकता, कैसे याद रखूंगा ये। तो कादर खान ने उनसे पूरे वो 16 पन्ने लिए और उनको ना वो स्पीच बोल करके दिखाई, क्योंकि वो कादर खान की रियल लाइफ पेन पे थी। ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड ही एक्चुअली फेल्ट ईच वर्ड ऑफ द स्पीच। ये देख करके अमिताभ बच्चन जी ने कादर खान को गले लगाया और एज इट इज ये सीन विद दिस स्पीच, 16 पेजेस लॉन्ग स्पीच, इस फिल्म में रखा गया है एंड ये एक आइकॉनिक सीन बन गया था। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की कहानियां बहुत सारी होती है मेरे पास, तो आपको क्या करना है, आपको बस मुझे सुनते रहना है ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट.
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
3: It's on.

0: FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

रजिया सुल्तान का ये गाना लता जी की आवाज में. दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय कमाल अमरोही साहब एंड द एंटायर मीडिया इंडस्ट्री वॉज शॉक्ड. वो इसलिए क्योंकि कमाल अमरोही ने धर्मपाजी को लिया था इस फिल्म में. अब मीना कुमारी जो कमाल अमरोही की वाइफ थी उस टाइम पे, कहते हैं कि उनका और धर्मपाजी के का एक बहुत ही ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग अफेयर था एंड द फिल्म मैगजीन्स वर राइटिंग अबाउट इट. हर एक को पता था कि दे लाइक ईच अदर. फिर कमाल अमरोही का धर्मेंद्र जी को लेकर के एक फिल्म बनाना, ये लोगों के गले से उतरी नहीं थी बात. लेकिन हाँ, दो प्रोफेशनल्स ने एक साथ काम किया था और फिल्म उस टाइम पे कुछ खास चली नहीं रजिया सुल्तान, लेकिन हाँ एक आइकॉनिक, एक मेमोरेबल फिल्म बनी. क्योंकि एट दैट टाइम इस फिल्म को अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात थी. 8 साल लग गए थे रजिया सुल्तान को बनने में. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ऐसे ही उस जमाने के गानों के किस्से चलते रहेंगे. सो डोंट यू गो एनीवेयर, कम राइट बैक.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो मुकेश जी।
2: कौन?
1: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
2: नहीं हो पाया भाई?
1: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
2: हाँ जी? नहीं हो पाया
1: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
2: नहीं क्या हो नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
1: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो
2: एक का... क्या समझ रहे हो भाई?
1: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
1: सर? वो
2: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
1: नहीं सर
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
1: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
2: क्यों नहीं हो पाया?
1: सर वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
2: है?
1: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
1: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
2: क्या करा दूँ
1: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
1: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप, गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
2: गुस्से ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
1: नहीं सर आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया उसमें, ग्रीस लगाया उसमें, हमने पेट्रोल डाला है।
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
1: अच्छा
2: मुझे चाहिए अपनी वापस।
1: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
1: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
2: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
2: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
8: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।

0: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
1: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रमेश सिप्पी साहब अपनी हर फिल्म से हीरो नहीं देते थे बल्कि विलेन दिया करते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, आशा ताई क्या, ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म शान, और इस फिल्म से हमें मिले थे कुलभूषण खरबंदा एज शाकाल, और उनका वो जो यू नो बॉल्ड लुक था वो इतना पॉपुलर हुआ था कि मेरे पापा बताते थे कि कॉलेज में भी बहुत सारे लड़के ना एक्चुअली में पूरे बाल शेव करके आए थे। वेल आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि रमेश सिप्पी साहब ने ना भाई आइकॉनिक हीरो से ज़्यादा आइकॉनिक विलन्स दिए। इस फिल्म में उन्होंने शाकाल दिया था शान में, और उससे पहले शोले में उन्होंने दिया गब्बर। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
2: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
1: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
1: Car

0: खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
3: 13 सप्टेम्बर रविवार
2: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
7: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
6: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
9: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

सुभाष गाइस, आपको ये यकीन था कि ये फिल्म चलेगी क्योंकि इसमें ऋषि कपूर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको कहा था कि ये फिल्म फ्लॉप होगी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सुभाष गाई ने डायरेक्ट की थी फिल्म जिसका गाना मैंने आपको सुनाया, यानी मूवी है कर्ज। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि उस टाइम पे ना जब कर्ज बन रही थी, उसी टाइम पे बच्चन साहब को लेकर के या फिर धर्मेंद्र जी को लेकर के ऐसे ना बहुत सारे मल्टी स्टारर फिल्म्स भी आ रही थी और उनमें काफी ज्यादा एक्शन भी दिखाया जा रहा था। सुभाष गाई ये फिल्म बना रहे थे, एक तो हैवी ऑन म्यूजिक एंड ऑल्सो इट वॉज अ रोमांटिक फिल्म, ऑल्सो रीइंकार्नेशन पे भाई पहली बार कमर्शियल फिल्म बन रही थी। अब ऋषि कपूर के साथ इस फिल्म में एक तो थे राज किरण, हु वॉज नॉट अ स्टार एट दैट टाइम एट ऑल, सिमी गिरवाल की कोई भी कमर्शियल वैल्यू उस समय नहीं समझी जाती थी बिकॉज बहुत सारी फिल्में उन्होंने की नहीं थी, जो की थी एक आध मेरा नाम जोकर वो इतनी सुपरहिट हुई नहीं थी। टीना मुनीम वॉज येट टू मेक हर डेब्यू बिकॉज उनकी फिल्म देश परदेश रिलीज नहीं हुई थी। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऋषि कपूर के कंधे।

पर, और क्या खूब निभाई उन्होंने ये फिल्म, जो कि फिल्मी पंडितों ने कहा था कि नहीं चलेगी एक ही स्टार पे, वो भी सिर्फ ऋषि कपूर। इस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए थे बॉक्स ऑफिस पे। पुरानी जीन्स पे श्रेया के साथ ऐसे ही उस जमाने के गानों के किस्से चलते रहेंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज स्टे बैक राइट हियर ओनली ऑन मिर्ची

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में

0: अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।

इस फिल्म में शूटिंग कम पिकनिक ज्यादा हुई थी पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और उस टाइम पे ना लोग ऑफ कोर्स एक्टिंग और शूटिंग और ये सब तो करते ही थे, लेकिन साथ में एक दूसरे के साथ एंजॉय भी बहुत करते थे। सो ये जो गाना आपने सुना मूवी कस्मे वादे का है। ये फिल्म बना रहे थे रमेश बहल, बच्चन साहब थे इस फिल्म में, और रणधीर कपूर थे, राखी थी, नीतू सिंह थी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि बच्चन साहब तो ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली बिजी रहते थे, तो वो इस फिल्म के सेट पर 10 दिन लेट पहुंचे। पूछो क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में थे अपने एक शो के लिए। अब 10 दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि सबके पोर्शंस शूट कर लिए गए और उसके बाद क्लब किया गया, या ना ना ना, 10 दिनों तक सारे कास्ट एंड क्रू मेंबर्स ने एक्चुअली में मस्ती की, पिकनिक की, और उसके बाद जब 10 डेज लेटर व्हेन बच्चन साहब केम तो वो सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे, और डायरेक्टर रमेश बहल के लिए एक अलग तरीके का लाइटर लेकर के आए थे जिससे वो बेहद खुश हो गए थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ और भी किस्से हैं भाई, तो कम राइट बैक।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। और कुछ गाने ऐसे हैं जो इंसान को ना डिफाइन कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किशोर दा को अगर पूछा जाता कि वो कौन सा गाना है जो आपकी जिंदगी को डिफाइन कर दे, जो आपके बारे में सब कुछ बता दे, तो पता है वो डेफिनेटली कौन सा गाना कहते हैं? ये वाला।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो, दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस लगाया नहीं।
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब नहीं
1: दी थी
2: मैं
1: कल को। अरे लेंस
2: ऐसे
1: पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
5: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
6: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
5: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
7: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
8: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
9: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे. व्हाट डू वी डू?
10: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 Days Pediatrics. दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस नाउ. वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग.
9: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
10: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे. द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स ऑफरिंग सेम डे सिक केयर. वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
13: अब मिर्ची खा.
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
15: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मूवी का नाम है इंतकाम और इस फिल्म में थे सनी देओल एंड अनिल कपूर और दोनों के बीच में इतनी भयानक लड़ाई हुई ऑन द सेट। अच्छा बात थोड़ी फनी भी है लेकिन देखा जाए तो थोड़ी ग्रोस भी है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। अब एक सीन है जिसमें अनिल कपूर और सनी देओल के बीच में लड़ाई होती है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि अनिल कपूर पता है क्या कर रहे थे, डेलिबरेटली कर रहे थे या फिर उनसे हो जा रहा था कि जब वो लड़ाई वाला सीन शूट कर रहे थे ना सनी देओल के साथ तो उनके मुंह से बार बार थूक निकल रहा था। सो ही वॉज कंटिन्यूसली स्पिटिंग ऑन सनी देओल्स फेस। तो सनी देओल ने दो तीन बार तो अपना मुंह पोछा और उनसे कहा आराम से डायलॉग बोल। ये सब हुआ लेकिन अनिल कपूर केप्ट ऑन डूइंग दिस। अब ये मुझे नहीं पता कि जानबूझ के हुआ कि हो ही रहा था उनसे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब सनी देओल ने अनिल कपूर को उनके गिरेबान से पकड़ा और बस शुरू हो गया था ढिशुम धड़ाका। फिर पूरे सेट को बीच में आना पड़ा, दोनों को अलग करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब अनिल कपूर ने सीन किया तो उनके मुंह से कोई स्पिट नहीं निकला। तो आप समझ रहे कि ये डेलिबरेट था या फिर हो रहा था। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के किस्से विद मी श्रेया। कम राइट बैक ओनली ऑन मिर्ची।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन। इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स, देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
10: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare. 79 Middlesex Avenue, Hill.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
14: Listener, mein back to back gana sunega.
15: Back to back gana sunega.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

कुणाल गोस्वामी और श्रीदेवी जी की पहली और आखिरी फिल्म थी ये, यही जिसका गाना अभी मैंने आपको सुनाया। इसका नाम है कलाकार, मूवी का नाम। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं। वो कहते हैं ना कि कई बार आप सारे मसाले भी डाल दो और आपको लगे कि आपने ये काम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, येट नहीं होता यार वो काम। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इसी फिल्म में, कलाकार में। सो कुणाल गोस्वामी ने एक इंटरव्यू में एक्चुअली में रिवील किया कि ऐसा लग रहा था कि हमने सब कुछ राइट किया है। ये जो फिल्म थी, इट वाज अ रीमेक ऑफ अ वेरी हिट फिल्म। फिर म्यूजिक ऑफ कोर्स, नीले नीले अंबर पर ऐसे बहुत सारे गाने हैं इस फिल्म के जो कि सुपर डुपर रहे। उसके बाद श्रीदेवी वॉज वेरी हॉट आफ्टर डूइंग हिम्मत वाला, मतलब शी वॉज इन डिमांड, पीपल वॉन्टेड टू सी हर, एंड लोगों को लगा था सब कुछ तो अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, फिल्म का रीमेक अच्छा है और एवरीथिंग वॉज इन प्लेस, बट येट फिल्म ने कुछ खास काम नहीं किया। बट आई एम हैप्पी कि फिल्म के गानों ने काम किया, इसीलिए तो उठा करके हैंड पिक करके ले आती हूँ इन्हें मैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज

0: वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है, हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठ कर देख लो है ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

फ्राइडे का मतलब है फिल्मी वीकेंड का ट्रेलर और मिर्ची सिद्दी के साथ मस्ती का सुपर हिट पिक्चर। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और फ्राइडे इवनिंग का फील ही ना अलग होता है, मतलब बॉस के ईमेल्स भी ना इतने हैवी नहीं लगते और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, आज रात क्या देखे। और बॉलीवुड का असली मजा ही इस वीकेंड पे है। ओटीटी पे फ्रेश ड्रॉप्स, थिएटर में बिग क्लैशेस और बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड्स, सब कुछ हैपनिंग है दोस्तों। और आपकी फिल्मी दोस्त मिर्ची सिद्दी लेकर आई है आज शाम का परफेक्ट एंटरटेनमेंट गाइड। तो मुझे बताइए कि फ्राइडे नाइट में आपका प्लान क्या है, थिएटर या टिकट या ओटीटी का रिमोट। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और आपके लिए स्पेशल फ्राइडे पिक्स आने वाले हैं जल्द आफ्टर दिस सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na
1: vidva la burga. Milci, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की.
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या हो नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया, तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
8: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
8: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
13: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी.

शाम शानदार लाइक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने और वो भी बिना स्नैक के? नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर। जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन।
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
13: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
17: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
18: कुछ कॉन्सर्ट्स का काउंटडाउन कैलेंडर से नहीं गानों से होता है, और आज मिर्ची पर वो काउंटडाउन फुल वॉल्यूम में होने वाला है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और सबसे पहले आप सबको बहुत सारा शुक्रिया एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द सोनू निगम कॉन्टेस्ट। आपके आंसर्स, आपके फेवरेट सॉन्ग्स और इतना सारा एक्साइटमेंट देखकर एक बात तो क्लियर है, न्यू जर्सी इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर सोनू निगम। और इसी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए अब मिर्ची पर सुने

निगम के बैक टू बैक गाने, क्योंकि कल यानी शुक्रवार सितंबर 11 को सोनू निगम लेकर आ रहे हैं रिवॉल्यूशन टूर एट हार्ड रॉक लाइव ईटस एरिना एटलांटिक सिटी में, प्रेजेंटेड बाय अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी। तो अगर टिकट अभी तक नहीं लिए तो चेकआउट ticketmaster.com, saiusainc.com या फिर suleka.com, क्योंकि बहुत ही कम टिकट्स बचे हैं, तो जल्दी से जाइए। और अब बातें कम, म्यूजिक ज्यादा, सोनू निगम बैक टू बैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
3: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
0: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
17: करियर में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हार्डवर्क के साथ रीपोजिशनिंग भी ना जरूरी हो जाती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड व्हेनेवर वी हियर अबाउट लेऑफ्स, AI, टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड इवन यंगर कलीग्स मूविंग फास्ट, कभी कभी ना नेचुरली एक सवाल आ ही जाता है, Am I still relevant? और अगर ये सवाल आपके भी माइंड में कभी आया है, then New Jersey, mark this date, September 27, because coming to Sheraton Edison are 4-time TEDx speakers, best-selling authors and multi-award-winning career coaches, Shilpa and Kapil Kulshrestha, bringing in their in-person career growth workshops to New Jersey. They have helped 1,500-plus mid-career professionals accelerate promotion, get double promotion, improve visibility, strengthen leadership presence, attract bigger opportunities, and even achieve 50-180% salary raises. This workshop is designed to help you revitalize your career, reposition your value, and move forward with more clarity and confidence. So, aaj hi register kijiye at playitful.com/NJ. That's playitful.com/NJ. Aur ab next level career energy ke liye next level gana right here on Mirchi. It's hot.

वीकेंड आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, पॉपकॉर्न थिएटर वाले चाहिए या घर के सोफे वाले? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। और जी हाँ, वीकेंड की तैयारी पहले से ही शुरू, क्योंकि इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की प्लेट में ऑप्शंस कई सारे हैं। सितंबर 18 के आसपास वॉच लिस्ट में डायरिया, लव स्टोरीज 3 और वाइब जैसे नए टाइटल्स आ रहे हैं। क्राइम से लेकर रिलेशनशिप्स और हाई एनर्जी एडवेंचर तक मूड के हिसाब से अलग अलग चॉइसेस अवेलेबल है। और मुझे तो लगता है वीकेंड प्लानिंग का ना एक नया डिपार्टमेंट ऑफिशियली ऐड हो चुका है कि क्या देखना है। मतलब पहले डिसाइड करो थिएटर या ओटीटी, फिर जॉनर डिसाइड करो, फिर सबकी चॉइसेस मैच करो, और आधा टाइम तो यार ट्रेलर देखने में ही निकल जाता है। तो इस वीकेंड आपका स्क्रीन मोड क्या है? थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी या फिर फुल ऑन बॉलीवुड मसाला? डीएम में इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। यार तब तक स्क्रीन बाद में चूज करना, क्योंकि गाना मैंने आपके लिए ऑलरेडी चूज कर लिया है, उसमें बिल्कुल देरी नहीं होगी। ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं
1: है?
2: मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels. किसी समय

0: प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
5: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
6: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
5: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
14: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
13: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
15: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
16: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध दूध ले, सब्जी वब्जी खरीदते, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
15: एक विनर और एक सिक्स प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा On the Mirchi Top 20 with me, Suren. Kal, sirf Mirchi par.
17: Mirchi Top 20.
18: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
19: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
20: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और शुक्र है शुक्रवार आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वर्क वीक खत्म और वीकेंड शुरू, और ऐसे में तो वैसे तो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग प्लान बनते हैं। कहीं पार्टी करने का प्लान बनता है, कहीं घूमने जाने का प्लान बनता है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनका एकदम प्लान सेट होता है कि इस वीकेंड जहां जहां ओपन हाउसेज है वहां वहां हम जाएंगे, और पूरी आइटिनरी फिक्स्ड होती है। तो अगर आप भी ऐसे हो और आपका भी प्लान है कि इस वीकेंड मैं ओपन हाउसेज देखने जाऊंगा और घर खरीदने का सपना है, तो मेरे दोस्त बीश की सलाह लिए बगैर बिल्कुल भी ओपन हाउसेज में मत जाना, क्योंकि लिए आपके लिए कौन सा मॉर्गेज पैकेज सही है वो बताएंगे मेरे दोस्त बीश। ओवर टू यू बीश।
21: शुक्र करो शुक्रवार है भाई और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज, गिविंग यू द फाइनल रेट अपडेट फॉर द वीक टुडे। आई एम

0: I'm going to talk about non-QM loans. Non-QM doesn't mean no qualification. It simply means the loan doesn't fit the traditional qualified mortgage guidelines. And in 2026, we are seeing more buyers look at this program because the way people earn money has changed. For example, bank statement loans can be a great option for self-employed business owners, entrepreneurs, and some 1099 borrowers. Instead of relying primarily on tax returns, the lender may look at buyers' bank deposits over a specified period to determine qualifying income. Another very popular program is the DSCR loan, which is designed primarily for real estate investors. Instead of qualifying based primarily on investors' personal income, the property's rental income and its ability to cover the debt can be central to the qualification. There are also programs that use 1099 income, profit and loss statements, or asset-based qualifications. So friends, buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.625%. 20-year fixed mortgage rate, 6.5%. 15-year fixed mortgage rate, 6.125%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And I'll spell it out. It is lionmtg.com. Remember, listeners, whether you are buying your dream home or refinancing, we have got an array of loan products to suit your needs. So pick up that phone and call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.
1: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
2: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
3: Of course, मेरी बेटी, she's damn smart.
2: पक्का, final answer.
3: Final answer. जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो. मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट. अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए.
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Inefficient.
8: Very complex.
9: Clumsy.
10: Confusion ही confusion.
11: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
13: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep Cow to Jano.
14: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes, and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business, and career. Call 732-366-6777.
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
17: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज. इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ.
18: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा एनजे. टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा. कॉल 9549188589.
19: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड.

0: फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स,
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने, उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
6: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेके जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
5: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
8: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा, शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट अ स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था, फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टेमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे, और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है, और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी, और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मज़ेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली, और वही सुनते हैं अभी। लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugal Bandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the local

0: lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
6: गणपति बप्पा आते ही एक ही फीलिंग होती है, नए शुरुआत की, ऑब्स्टेकल्स हटाने की और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ने की। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और करियर में भी ना कभी कभी वही जरूरी होता है, बिकॉज व्हेनेवर वी हियर अबाउट लेऑफ्स, AI, टेक्नोलॉजी चेंजेस, यंगर कलीग्स मूविंग फास्ट, हमारे माइंड में एक ही सवाल आता है, एम आई स्टिल रेलिवेंट। तो शायद वक्त आ गया है अपने नेक्स्ट चैप्टर को और थोड़ा क्लियरली देखने का। सो न्यू जर्सी, मार्क द डेट September 27th, 4-time TEDx स्पीकर, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ आ रहे हैं न्यू जर्सी में। दे आर कमिंग टू शेरेटन एडिसन फॉर एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप। दे हैव हेल्प्ड 1500 प्लस मिड करियर प्रोफेशनल एक्सेलरेट देयर प्रमोशंस, गेट डबल प्रमोशन, इम्प्रूव देयर विजिबिलिटी, स्ट्रेंथन लीडरशिप प्रेजेंस, अट्रैक्ट बिगर अपॉर्चुनिटी एंड इवन गेट 50-180% सैलरी रेजेस। दिस वर्कशॉप इज डिजाइन टू हेल्प यू रिवाइटलाइज योर करियर, रिपोजिशन योर वैल्यू एंड मूव फॉरवर्ड विथ मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। सो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए एट playitfull.com/NJ, that's playitfull.com/NJ, and mark the date September 27 at Sheraton Edison, New Jersey. तो बप्पा के सीजन्स में ऑब्स्टेकल कम हो और ग्रोथ का रास्ता थोड़ा और क्लियर हो, इसलिए सुनते ही अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची।

दोस्तों हम सब ना अपनी कार में दो अलग पर्सनालिटीज लेके चलते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो हम बिल्कुल डिसेंट से सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फेवरेट बॉलीवुड गाना बजता है, स्टेयरिंग व्हील माइक बन जाता है, विंडशील्ड ऑडियंस और पूरी कार एक पर्सनल कॉन्सर्ट स्टेज। यार किसी को लिरिक्स परफेक्ट आते हो या नहीं आते हो, कोई सिर्फ लाला ला पे काम चला लेता है, और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो इतना सॉलिड होता है कि एकदम कॉन्फिडेंस से गलत गाना गा देते हैं कि ओरिजिनल सिंगर भी सोचने लगता है कि भाई क्या गा रहे हो। तो चलिए आज एक काम करते हैं, जो अगला गाना है जो मैं बजाने वाली हूँ आपके लिए, उसे सिर्फ सुनना मत, जहाँ भी हो, कार में, किचन में, ऑफिस से घर जाते हुए, चैलेंज ये है कि उसके साथ आपको जोर से ये गाना गाना है। क्योंकि बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी ना बने यार, वो तो साथ गाने के लिए भी बने हैं, अपना भी तो टच होना चाहिए। और हाँ, बाद में डीएम करके जरूर बताना कि आज के गाने में लिरिक्स याद भी थे या फुल कॉन्फिडेंस पे गलत गा रहे थे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो चलिए फ्राइडे कार म्यूजिक शुरू करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La
1: virba la burga. Mirci, burga. हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है, क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ, आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं,
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब नहीं।
2: मैं कल को अरे लेंस ऐसे
1: पूरे कपड़े
2: कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो हैं।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी, एल्बम ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
7: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम। Same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
10: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
12: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
10: Wait, they can see us on Sunday?
12: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस।

0: और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
0: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ dialogue ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, tap tap send है ना? इंडिया पैसे भेजने का smarter way, tap tap send with zero transfer fees, competitive rates और 95% transfers in under 3 minutes, सीधे bank या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ accent ही नहीं, काम भी fast।
6: Tap tap send, download and send money to India today. Tap tap send payments co is licensed as a money transmitter by NYS, NMLSID 2108069.
7: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने, उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
10: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती है तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध दूध ले सब्जी वब्जी खरीदती, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
9: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
11: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सुजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप भी बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं, टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
10: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
11: I am not going to bed with you ever again.
10: But why? What did I do?
11: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
10: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
11: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
10: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
11: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
12: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskura kar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
14: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
15: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
16: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
17: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
20: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है। लेकिन अरिजी वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
21: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती है तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीदते हैं, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
20: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
22: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
23: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, एक ऐसा गाना, एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाली किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपरहिट एल्बम का सुपरहिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन। इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Mirchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
7: Famous Indian astrologer, Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
11: लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
12: हमारा करियर भी ना कभी कभी फुल बॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। फर्स्ट हाफ में सेटअप, इंटरवल पे कंफ्यूजन और सेकंड हाफ में डिसाइड होता है कि हीरो कमबैक कैसे करेगा। श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आपको भी लग रहा है कि आपके करियर की स्टोरी को भी एक स्ट्रॉन्गर सेकेंड हाफ चाहिए, देन न्यू जर्सी, मार्क द डेट, September 27, शेरिटन एडिसन में आ रहे हैं 4-time TEDx स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोच शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ, आपके करियर की स्टोरी को एक फ्रेश कमबैक देने के लिए, विद एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप डिजाइंड स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स हु आर रेडी टू रीथिंक व्हाट कम्स नेक्स्ट। एंड दे आर नॉट जस्ट कमिंग विद थियोरी, दे हैव ऑलरेडी वर्कड विद 1500 प्लस मिड करियर प्रोफेशनल्स, हेल्पिंग देम एक्सेलरेट प्रमोशंस, गेट डबल प्रमोशंस, इम्प्रूव विजिबिलिटी, स्ट्रेंथन लीडरशिप प्रेजेंस, अट्रैक्ट बिगर अपॉर्चुनिटी एंड इवन गेट अप टू 50-180% सैलरी रेजेस। सो थिंक ऑफ दिस वर्कशॉप एज योर करियर का री राइट रूम, वेर यू कैन रिवाइटलाइज योर करियर, रिपोजिशन योर वैल्यू एंड मूव फॉरवर्ड विद मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए एट playitfull.com/nj, that's playitfull.com/nj। तो फिर चाहे लेऑफ्स हो, AI हो, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो या यंगर कलीग्स फास्टर मूव हो रहे हो, आपके करियर का पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज ही जाइए, रजिस्टर कीजिए एट playitfull.com/nj एंड मार्क द डेट September 27 एट शेरिटन एडिसन न्यू जर्सी। और म्यूजिक का पिक्चर भी अभी बाकी है मेरे दोस्त विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहेबान मेहरबान कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विथ अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन?
2: मुकेश जी, मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हारे, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये.
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: एक का... क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: मैं क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
3: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
4: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
5: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
11: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती है तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
3: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
12: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
13: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
14: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना, मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो, दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही, संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था, क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना तो लगता है कि यार एक ही सफ़र को दो नज़रियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना, ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, वो बजाते हैं यहाँ पर। फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर। जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2 9033647244, दैट इज 9033।

0: कीजिए। टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 7323666777।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है। लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
10: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती है तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीदते, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
9: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
11: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
13: बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पर फोकस कर रहे हैं, और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે. ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ. આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં
3: 13 સપ્ટેમ્બર રવિવાર
2: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન. વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર, વિસ્કાટવે, ઓન 732-357-8200. જય ગુરુદેવ.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
7: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने. उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह. आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट

0: के किनारे है, लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुरेन के साथ only on Mirchi, it's hot. Sham shandar, let's do
3: not donkey, have a funky time. गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

हेलो बॉडी पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची, जहां वीकेंड का मतलब है मंडे की टेंशन को म्यूट और म्यूजिक का फुल वॉल्यूम ऑन करना। चाहे आप डांस फ्लोर पे हो, ट्रैफिक में, या बेड पे हॉरिजॉन्टल होके पार्टी कर रहे हो, टुनाइट वी डोंट जज। वेलकम वंस अगेन टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची ओयोंधिका। सो लेट्स बिगिन दिस काउंटडाउन।